वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त सैकत चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन गुरुवार, अगस्त माह की 13 तारीख सन ईस्वी 2026। तदनुसार शक संवत 1948 की श्रावण माह की 13वीं तिथि। फिलवक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि पहले ही रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए दोस्तों, आप बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है पशुओं के संक्रामक रोग एवं टीकाकरण। वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
1: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें पशुओं के संक्रामक रोग और टीकाकरण की। ग्रामीण भाइयों, पशुओं के संक्रामक रोगों में कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका कोई उपचार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में रोग से बचाव के लिए टीकाकरण ही उचित होता है। संक्रामक रोगों से पीड़ित पशुओं की चिकित्सा भी अत्यंत महंगी होती है। उपचार के लिए पशु की चिकित्सक भी गांव में आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इन रोगों से पीड़ित पशु को यदि उपचार करने से भी जीवित बच जाते हैं तो भी उनका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है और दूध की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे पशुपालकों को अधिक आर्थिक हानि होती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि पशुओं में रोग रोधक टीके निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगवाए जाएं। किसान भाइयों, खुरपका मुंहपका रोग की बातें हम कर लें। यह एक विषाणुओं से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो कि सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पशुओं को पूरी वर्ष कभी भी हो सकता है। संकर गायों में यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। इस रोग से पीड़ित पशु के पैर से खुर तक और मुँह में छालों का होना, पशु का लंगड़ाना और मुँह से लगातार लार टपकाना इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। यह एक प्राण घातक रोग भी है। रोगी पशु की चिकित्सा न करने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर पशु का टीकाकरण जरूर करवाएं और पशु में रोग फैलने की स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। किसान भाइयों, अगर हम चेचक की बातें करें तो यह भी विषाणुओं से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो आमतौर से गायों और उसकी संतान में होता है। कभी कभी गायों के साथ साथ भैंसों में भी यह रोग देखा गया है। इस रोग में पशु की मृत्यु दर तो कम होती है, परंतु पशु की कार्यक्षमता और दुग्ध उत्पादन में अत्यंत कमी आती है। यह रोग भी आमतौर से एक पशु से दूसरे पशु में लगता है। इस रोग से बचाव के लिए वर्ष में एक बार टीका जरूर लगवाएं। किसान भाइयों, अगर हम गलघोंटू की बात करें तो यह एक प्रकार की जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, इसलिए इनको संक्षिप्त रूप से HS नाम से जाना जाता है। यह एक घातक छूत का रोग है। इस रोग को घुड़का, घोटुआ, गलघोंटू नामों से भी जाना जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से गाय और भैंसों में होती है। बरसात के समय इस बीमारी का अधिक प्रकोप होता है। इस रोग का जीवाणु मलमूत्र और नाक के स्राव द्वारा अन्य पशुओं में फैलता है। इस रोग में पशु के गले और गर्दन की सूजन होना, शरीर गर्म और दर्दयुक्त, सूजन से श्वसन अंगों पर दबाव, तेज बुखार, पेट फूलना, गले में घुटन के कारण श्वास का रुकना, नाक और मुंह से पानी आना आदि होते हैं। इस रोग में कुछ ही घंटों में पशु की मौत भी हो जाती है। पशु की प्राण रक्षा के लिए सुनियोजित और तात्कालिक उपचार की आवश्यकता होती है, इसलिए रोग के लक्षण प्रकट होते ही पशु चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें। इस रोग से बचाव के लिए पशुओं में प्रतिवर्ष टीका लगवाना चाहिए। बरसात प्रारंभ होने के 1 माह पहले ही पशुओं को इस बीमारी से बचाव का टीका लगवा दें। किसान भाइयों, गिल्टी रोग की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही भयंकर रोग है। यह बीमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि में होती है। स्वस्थ पशुओं में यह रोग रोगी पशु के दाने, चारे, बाल, ऊन, चमड़ा, श्वास और घाव के माध्यम से फैलता है। ग्रामीण भाइयों, इस रोग में पशु के जीवित बचने की संभावना बहुत कम रहती है। यह रोग गाय, भैंस के अलावा बैलों में भी फैलता है।

0: रोगी पशुओं को गांव के बाहर खेत में रखना चाहिए। रोग का गंभीर रूप आने पर पशु के मुंह, नाक, कान, गुदा और योनि से खून बहना प्रारंभ हो जाता है। रोगी पशु कराहता है और पैर पटकता है। बीमारी की स्थिति में आने पर पशु मर सकता है। यह ध्यान रहे कि रोगी पशु के बीमार होने पर कभी भी टीका नहीं लगवाना चाहिए। रोग के लक्षण प्रकट होते ही पशु चिकित्सक की सहायता ली जानी चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें पशुओं के संक्रामक रोग और टीकाकरण की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 236।
2: एपिसोड नंबर 236, 236।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्रीराम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं, और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्रीराम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 236। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं चिंतन। विषय है सतगति का प्रभाव। वाचन स्वर रेडियो साथी अनुपमा तिवारी का है।
1: सत्संगति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संगति, अर्थात सच्चे या अच्छे मनुष्यों की संगति। इसमें यह तो सत्य है कि मनुष्य समाज में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति प्राप्त करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे लाभ होता है, उसका कल्याण होता है, अन्यथा बुरी संगति के कारण वह जीवन में असफल होकर दर दर की ठोकरें खाता है। अच्छी संगति वाला दुर्जन भी वैसा ही अच्छा जीवन जीते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। शठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सतसंगति के द्वारा मनुष्य न केवल अपना भला करता है अपितु वह अपनी जाति, समाज और राष्ट्र को भी पूरी तरह से लाभान्वित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा गाई है, सुनी आचरज करे जने कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। सतसंगति साधुओं की संगति होती

0: से मनुष्य को केवल लाभ ही लाभ है। हमारे नीति के श्लोक से भी यह बात समझ में आती है, जाइए धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम मनोनति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अज्ञानता का हरण करके मनुष्य की वाणी में सत्यता को प्रविष्ट कराती है, मन की उन्नति करके चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फहराती है, चेतना को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जो अच्छी संगति में रहता है उसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई बुराई असर नहीं करती। जैसे रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत करने से एवं उन्हें सुनने मात्र से सहज ही दुर्बुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में कदाचार कर्तव्य पालन धर्मनिष्ठा व्यवहार कुशलता तथा मन वचन और कर्म की पवित्रता आदि सद्गुणों का विकास होता है। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अच्छी संगति के प्रभाव से मनुष्य दयावान विनम्र परोपकारी और ज्ञानी बनकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि लुटेरे और डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग के प्रभाव से उच्च कोटि के संत भक्त और आत्मज्ञानी हुए। अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन भगवान बुद्ध के सत्संग के प्रभाव से उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, दूर हो गए। इसीलिए दुष्टों से दूर रहकर सत्संगति में रहना हमारा ध्येय होना चाहिए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे चिंतन, वाचन स्वर रेडियो साथी अनुपमा तिवारी का था। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आराधना। जैसा कि आप जानते हैं, आराधना कार्यक्रम भक्ति संगीत पर आधारित है और आज की हमारी कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल।

0: आइए दोस्तों, आराधना कार्यक्रम के बाद अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य की बातों से और सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। दोस्तों, आज का भेंटवार्ता है रीढ़ की हड्डी की बीमारी और सावधानियां। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर राजचंद्र झा।
1: वर्तमान जीवन शैली की यदि हम बात करें तो रीढ़ की बीमारी से बहुत सारे लोग आजकल ग्रसित हो जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस बीमारी को प्रभावित करती है, और क्या क्या सावधानियां अपने हम जीवन में बरतें, और खान पान का हम किस प्रकार ख्याल रखें कि एक संतुलित जीवन हम व्यतीत कर पाएं और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियाँ हम तक नहीं पहुँचें। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजचंद्र झा। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है रीढ़ के हड्डियों से संबंधित बीमारियों में?
2: शरीर के किसी भी अंग की हम बात करें तो आमतौर पे चार कारण गिनवाए जाते हैं बीमारियों के होने के पीछे। एक जन्मजात, जैसे रीढ़ की हड्डियां हैं, किसी बच्चा पैदा होता है उसकी रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, या एक से ज़्यादा हड्डी एक से एक साथ मिल जाए तो उसका उसकी हाइट लंबाई कम होती है। दूसरा, संक्रमण बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरिया से जीवाणु से हो सकते हैं, कीटाणु से हो सकते हैं। तीसरा, ट्यूमर, जो साधारण ट्यूमर जो जानलेवा नहीं होता है, बेनाइन, या जिसे हम कैंसर कहते हैं, मैलिग्नेंट। और चौथा कारण होता है चोट लगना। तो रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों को भी हम इन्हीं चार भागों में बांट के देखते हैं। जन्मजात बीमारियों का मैंने कहा, उसका हमारे पास अभी कोई ऐसा साधन नहीं है खान पान में या दवाइयों के माध्यम से कि उसको हम रोक सकें। दुर्घटना, अपनी तरफ से सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटनाएं होंगी तो उसका इलाज होगा। संक्रमण से बचा जा सकता है, और जो आज की जीवन शैली का आपने जिक्र किया जिसकी वजह से कमर दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, तो उसमें खान पान और जीवन शैली में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी, आजकल के हमारे युवा साथी लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं, और काम करने के सिलसिले में बहुत सारी बीमारियाँ उन तक पहुँचती है। उन्हें कमर में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है, और कभी कभी पैर के पीछे भी उन्हें दर्द का एहसास होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, किस तरह की हम सावधानियां रखें कि बीमारी है नहीं हो?
2: अब समय और युग का अपना धर्म होता है, लैपटॉप पर काम करना है तो करना है, लेकिन व्यक्ति के हाथ में जो है कि आप इससे कैसे बचें। तो इसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं कि एक तो आप एक ही स्थिति में, एक ही पोस्चर में शरीर को ना रखें, बीच में एक आध मिनट के लिए आप उठ के दो चार कदम टहल सकते हैं। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो गर्दन से लेकर कमर तक सहारा दे, सीधा होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए, सीधी और कड़ी कुर्सी का उपयोग करें, और अगर संभव हो तो लैपटॉप को टेबल पर थोड़ा ऊंचा कोई सपोर्ट देके रखें ताकि लैपटॉप का स्क्रीन आपके नज़रों के सामने पैरेलल हो, कि आपको झुक के ना काम करना पड़े। तो अगर ये छोटी छोटी सावधानियों से आप रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ से बच सकते हैं।
1: जिसके आरंभिक लक्षण हैं वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपने दिनचर्या में हम सुधार ला लें?
2: प्रारंभिक लक्षण ज़्यादातर मामले में ये होता है कि काम करते समय दर्द का एहसास होना है, या थकावट का, कड़ापन गर्दन के पीछे, कमर के पीछे कड़ापन का होना भी शुरुआती लक्षण है। इस स्थिति में अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि काम की अधिकता से ऐसा हो रहा है, लेकिन असली सावधानी की ज़रूरत इसी समय है कि आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके बैठने के तरीके, आपके काम करने के तरीके के बारे में सुझाव देंगे, आपको खान पान के विषय में बताएंगे, आपको कुछ व्यायाम की सलाह देंगे, और अगर आवश्यक होगा तो दवाइयां देंगे। इन चारों के संयोग से ही इन बीमारियों

0: से बच भी सकते हैं और अगर बीमारी हो गई है तो उसका समाधान भी निकल सकते हैं। खान पान में सबसे आवश्यक ये है कि एक चीज हम लोग याद रखें कि अपने रसोई घर में उन चीज़ों का ज़्यादा समावेश करें जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, दादा नाना नानी दादी। ये फास्ट फूड ने बहुत नुकसान किया है। इस वर्ष पूरी दुनिया में, विशेषकर भारतवर्ष में, मोटे अनाजों पर काफ़ी चर्चा हो रही है और फिर से एक बार उनको हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो मोटे अनाज, अब अगर भात ही है, चावल खाना है, तो मोटा उसना चावल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर आप मिलेट्स जिसको कहते हैं, तो उसमें मड़ुआ है, कोदो है, बाजरा है, जो इन सब का भी प्रयोग शुरू करें। एक दौर आया कि हम लोग मैदा की तरफ भागते गए, महीन और चिकना दिखने वाले चावल की ओर गए, इससे नुकसान हुआ। और जो आपके और हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध सब्जियां हैं, साग हैं, झारखंड इस मामले में बहुत धनी है, तरह तरह के साग यहाँ सालों भर उपलब्ध रहते हैं और सभी साग शरीर के लिए, खास करके हड्डियों के लिए भी, जैसे पालक है, बहुत लाभदायक है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और फास्ट फूड चाउमीन जैसे पदार्थों से बचें।
1: एक्सरसाइज की हम बात करें, क्योंकि हम आजकल घरों के अंदर सिमट के रह जाते हैं, घूमना फिरना हमारा बहुत कम हो गया है, तो व्यायाम हम कितना करें और कितना हम सुबह की सैर करें?
0: आमतौर पे इस बारे में सलाह आज के दिन जो दी जा रही है कि कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट और सप्ताह में 5 दिन, अगर संभव हो तो 7 दिन करें, लेकिन नहीं संभव हो तो सप्ताह में 5 दिन कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन सैर करें और तेजी से कदम, ब्रिस्क वॉकिंग हम लोग कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो बाहर नहीं निकल पाते हैं या मजबूरी है महानगरियों में कि ओपन स्पेस, खुली जगह नहीं है जहां जाके आप व्यायाम कर सकते हैं, तो घर में कुछ प्राणायाम और कुछ आसन हैं जो कोई भी गृहस्थ हो वो कर सकता है। और जो ऑफिस में, अगर आपके जगह है, थोड़ी सी भी जगह है, तो आजकल सलाह ये दी जा रही है कि आधे घंटे बैठने के बाद अगर आप एक मिनट भी चहलकदमी कर लेते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी, पैर, घुटना, कूल्हा, नीचे कमर, पीठ और गर्दन का दर्द कम होगा।
1: और कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं रीढ़ की हड्डी की, जिससे हम काफी परेशान हो जाते हैं?
0: रीढ़ की हड्डी में एक तो है कि इन्फेक्शन होता, जिसमें हमलों के देश में बहुतायत में पाया जाता है, वो है रीढ़ की हड्डी का टीबी, यक्ष्मा रोग, उसको भी प्रभावित करता है। उसमें घाव हो जाता है और अगर सड़ने की प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक रह गई तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो मुख्य नस होता है उस पर दबाव पड़ने से लकवा भी हो सकता है। टीबी ना हो तो बैक्टीरिया, साधारण कीटाणुओं से होता है, उसमें पस जैसे कि फोड़ा जैसा रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। और जो आज के जीव समय की महामारी के रूप में जिसको हम लोग देख रहे हैं और उसका इलाज कर रहे हैं, वो है रीढ़ की हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें बैठे बैठे फ्रैक्चर, आपकी हड्डी बिना किसी चोट के भी टूट जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है, जैसे कि लकड़ी में घुन लग जाता है, उस तरह का हो जाता है। और इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है, तो रीढ़ की हड्डी के भी ट्यूमर होते हैं। उसमें एक मैंने कहा कि जो जानलेवा ना हो, बेनाइन, और एक जो गंभीर घातक हो सकता है, मैलिग्नेंट अर्थात कैंसर, वो रीढ़ की हड्डियों का भी होता है।
1: अंत में क्या कहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खुश रहिए और बीमारियों से दूर रहिए।
0: सक्रिय रहें, भोजन मोटा रूखा ज़्यादा करें, भोजन में सामग्रियों का प्रवेश करें, और शरीर के अंगों को एक स्थिति में लगातार रखने की बजाय उसका थोड़ा बहुत संचालन होना चाहिए।
2: आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत।

0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद 7:00
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकम् 26,2000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्य सर्वकाराः सहकारिता विकास कार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीय साहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,2000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकम् 26,2000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मंत्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानां उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वांछति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गैरातपुर अहमदाबाद खंडे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,00,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेल मंत्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मंत्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 6,100 मीटर मिता भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हर घर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मंडल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वम् एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते।

0: भारत ऋतुविभागेन उत्तर बंगालखात्याः उपरि न्यूनचापक्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशाराज्ये, गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीय दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्ण पदकानि, एकं रजत पदकं, एकं कांस्य पदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आप सभी का रेडियो दोस्त सैकत चैटर्जी। आइए दोस्तों जान लेते हैं आगे हमारे प्रातकालीन सभा में और कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बस अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर हम सुनेंगे शोभा गोटू का शास्त्रीय गायन। कार्यक्रम का नाम है राग रंग। दोस्तों राग रंग खत्म होने के कुछ देर बाद यानी कि 7:45 पर हम सुनेंगे हमारा आज का प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की कड़ी संख्या 7। इसके बाद दोस्तों जुड़ने का समय होगा दिल्ली केंद्र से, जहां से हम 8 सुनेंगे समाचार प्रभात और सुबह 8:15 पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों 8:30 पर हम जुड़ जाएंगे अपने रांची केंद्र से और सुनेंगे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। रांची केंद्र से जुड़ाव खत्म करते हुए सुबह 8:45 पर हम जुड़ जाएंगे फिर से एक बार आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और सुनेंगे हमारा फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों गीत गुंजन कार्यक्रम के बाद सुबह 9 का समय निर्धारित है जोहार पलामू कार्यक्रम सुनने के लिए। जोहार पलामू कार्यक्रम के बाद फिर से एक बार हम जुड़े रहेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का भाग 1349। इसके बाद दोस्तों हम सुबह 10 दिल्ली केंद्र से जुड़कर अंग्रेजी और 10:05 में दिल्ली केंद्र से ही जुड़कर सुनेंगे हिंदी समाचार। दोस्तों इसके बाद यानी कि 10:10 से लेकर शाम 5:30 तक हम लगातार जुड़ते रहेंगे अपने दिल्ली मुंबई और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत कार्यक्रम आज के मेहमान, रंग तरंग, यादों की महफिल, गीत माला, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, हल्लो फरमाई और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को फिर शाम 5:30 पे हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से जुड़कर सुनेंगे हमारे रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग से। दोस्तों, आज राग रंग के हमारे गायक कलाकार हैं शोभा गोटू। आइए दोस्तों, शोभा गोटू से हम लोग सुनेंगे राग कजरी, राग ठुमरी मिश्र और भैरवी पर आधारित

दोस्तों आप लोग सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। राग रंग के आज के कलाकार थीं शोभा गोटू। आइए दोस्तों अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की कड़ी संख्या 7।
1: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन मेंटल हेल्थ एंड एक्सेस टू जस्टिस केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी। दिस टॉक वाज पार्ट ऑफ अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
2: जब तक एक

whether he is healthy or not. शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं. And we usually ignore that the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू cope up with those things, are we productive despite having to face various challenges in life. So if we are able to do so, we would say that I am mentally healthy, I am able to deal with my mental health adequately. There are various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain, and at the same time we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों. तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है. बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक helplessness ki feeling deta hai. That is the time when we need to seek help. If we are able to face the stress adequately, we are fine. But if we are not able to face the coping, we are not able to face those challenges, then we start having headache ho raha hai, mujhe bahut thakan lagti hai, mere ko neend nahi aa rahi hai. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues, kyunki aksar hum मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल. ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, I'm just giving an example of sadness, depression, which is a very common mental disorder, and it is sadness or depression is commonly used word among the public. So how do we recognize these signs? Jaisa ki maine kaha, sabse pehle hum sharirik complaints dete hain, mere headache ho raha hai, mera man nahi kar raha nahane ka, mera ko neend theek se nahi aati, ya mujhe bhook bahut zyada lagti hai, ya mera man nahi karta hai khana khane ko. So these are some of the physical somatic complaints that if one is feeling that or one is reporting, we need to take it seriously. Some of the behavioral signs include, there is a sudden, parents aake kehte hain ki kai bari pata nahi bina provocation ke, bina koi kisi context ke irritable ho jata hai, wapas jawab deta hai, ya unnecessarily shopping aajkal ho rahi hai. Extremes of behavior which was not there earlier. So any change over the time which is not there, which is not acceptable by the family, that means there is some, this behavior needs to be attended to. At a social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. Choti choti cheezon ko leke hum nervous ho jate hain. Sometimes we say that mujhe lag raha ki bas जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अ

0: in between at night, or there is a change in my interactive. पहले बहुत ज़्यादा socialization होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. So these are gross signs which may be due to any reason, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब कॉमन बीमारी है. बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है. And that is one way of understanding what this is about. Many times, unlike other illnesses, people do report, mere ko bahut depression rehta hai. It should be taken seriously. It's a cry for help that I am not feeling well. Aksar dekha gaya hai ki individuals who do try to commit suicide, they do say, they verbalize their problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize later on. अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. These may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. It may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. At times, if it is possible, तो teachers setting में या parents जो educated हैं, we have small self-administered questionnaire which can actually tell you कि ये इस 10 items में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है. That means you need to consult a mental health professional. PHQ, GAD, 7 items, 9 items, it's hardly anything. Very simple items which can be used in community.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on mental health and access to justice, care and human dignity by Dr. Rachna Bhargava, Professor Clinical Psychology, AIIMS Delhi.
2: ऐसा नहीं है कि adults में adult की problems होती है. It has been documented worldwide that most of the mental illness, they have their onset in the adolescent age. That's why we emphasize कि बच्चों में और adolescents में it's very important to pick the signs early so that we can prevent any severity of mental illness. Help seeking treatment gap is very very severe in our context. In the recent National Mental Health Survey, 70-90% treatment gap exists. That means ki people may have mental illness but they do not seek help. So what do we do? We need to tell them that we need to seek help early. Because I'm just giving this example, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी, बच्चा एक जगह टिकता नहीं है, वो बार बार भाग जाता है, खाना खाने में भी बैठता नहीं है. हाइपर एक्टिविटी इज वन इलनेस विच कैन बी इजिली बी रिकॉग्नाइज. इफ इट गोज अनट्रीटेड, इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट इट मे लीड टू, व्हेन द चाइल्ड ग्रोज टू एन एडोलेसेंट एज, ही मे हैव डेवलप कंडक्ट डिसऑर्डर. वी कैन सी दैट द ब्रेन में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. जो हमारा फ्रंटल पार्ट है दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एमिग्डाला विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर इमोशंस. सो व्हेन वी आर हेल्पिंग द चाइल्ड, वी आर हेल्पिंग इन प्रॉपर डेवलपमेंट. दिस सपोर्ट दैट कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंट दैट हेल्प्स इन द इमोशनल लेवल एज वेल. अ चाइल्ड वुड फील वैल्यूड. There would be decrease in the cortisol levels, which means stress kam hota hai, and there is a improved decision making. So brain, mind and our behavior, everything is in

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
7: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले

0: कि कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
1: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
2: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
3: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
5: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
6: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर

0: झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरल में आज तीन स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्णाकुलम के लुलू मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी में कथित धांधली के मामले में छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनशन की दी चेतावनी। भाजपा ने सीएजी रिपोर्ट पर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार में प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय प्रबंधन का दिखा अभाव। कांग्रेस बोली, भाजपा सीएजी की रिपोर्ट पर जनता को कर रही गुमराह। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे 14 आरोपियों को ठहराया दोषी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर झारखंड के सांसदों से किया संवाद, लोगों के बीच जागरूकता लाने का किया आह्वान। और मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची, गुमला, हजारीबाग समेत कई जिलों में बारिश का जताया अनुमान, तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी में कथित धांधली और गड़बड़ी के मामले में छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है। इस मामले की सीबीआई जांच कराने समेत कई मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छात्रों की जायज मांगों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। श्री दास ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार छात्रों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो वे अगले सप्ताह अनशन करेंगे।
5: एक आंदोलनकारी रघुवर दास सरकार को चेतावनी देना चाहता, एक सप्ताह के अंदर जो हमारे छात्रों का डिमांड है, हमारे बच्चों का डिमांड है, अगर एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया, मैं भी अनशन में बैठ।
4: वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने वाले हर छात्र के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। उन्होंने छात्रों की शेष मांगों के समाधान को लेकर संवाद को जरूरी बताया।
6: 20 साल से जो झारखंड राज्य में ही जेपीएससी की जांच भी सीबीआई के पास है, उसका क्या आउटकम निकला? कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। मैं छात्राओं को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो बेहतरीन वो इस राज्य के लिए चाहते हैं, रिजल्ट वाइज, आउटकम वाइज, रिफॉर्म वाइज, वो इस राज्य के लिए होके रहेगा। बीजेपी के लोग ये चाहते थे कि झारखंड को दूसरा जंतर मंतर बनाया जाए। हमारी जो वार्तालाप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता है कोई भी पक्षाचार।
4: जेपीएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में रांची पुलिस ने करीब 100 लोगों को नामजद करते हुए 500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सरकार की प्रशासनिक अक्षमता और वित्तीय कुप्रबंधन साफ दिखता है।
7: 2024-25 में 31,110 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उपयोग ही नहीं। 2025 मार्च में अकेले 26,836.42 करोड़, अंतिम महीना ये वर्ष जब समाप्त 1,60,000 करोड़ सीएजी को सरकार ने दिखा नहीं पाए, तो इसी प्रकार के पैसे को निकाल करके इधर से उधर लोग बंदर बांट करते।
4: इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। श्री शाहदेव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सीएजी की रिपोर्ट को

तोड़ मरोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। इस दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे 14 आरोपियों को दोषी ठहराया है। मुकदमे में 16 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। इनकी सजा पर कोर्ट 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। यह मामला लेवी वसूली, आपराधिक साजिश और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान झारखंड और ओडिशा के सांसदों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर संवाद किया। बैठक में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसके तहत झारखंड में 16,754 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। श्री नड्डा ने सांसदों से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर टीबी की जल्द पहचान, उपचार और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। हजारीबाग जिले में होमगार्ड बहाली में पैसे के लेनदेन के आरोप में हजारीबाग पुलिस ने एक अभ्यर्थी और एक होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को साक्ष्य भी बरामद हुआ है। इसकी पुष्टि एसडीपीओ सदर रूपक कुमार सिंह ने की है।
3: होमगार्ड बहाली के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। विकास आयुक्त महोदया को सूचना मिला, डॉक्यूमेंट सत्यापन के क्रम में बिचौलिया किस्म के लोगों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में पैसे और मोबाइल इत्यादि साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं।
2: मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कुछ इलाकों में तेज हवा चलने, गरज और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। मौसम में इस बदलाव का असर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी देखने को मिल सकता है। आज राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भाग के गुमला, रांची, खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो और लोहरदगा में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने लोकसभा में खान, खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक के पारित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में टीडीपीएल के एक अन्य स्टाफ के खुलासे की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अखबार ने लिखा है, ओएमआर और ओएसएम से छेड़छाड़ कर बेची गई नौकरियां, पैसे लेकर 300 अभ्यर्थियों को कराया गया पास। दैनिक जागरण ने लिखा है, नियुक्ति परीक्षाओं में

0: से और पावर से तय हुई मेरिट, एक और आईएएस का आया नाम। प्रभात खबर ने राहुल गांधी के हवाले से लिखा है, झारखंड मामले में चुप नहीं हूं, छात्रों के खिलाफ हिंसा स्वीकार नहीं। हिंदुस्तान ने एन चंद्रशेखरन के अगले साल टाटा संस छोड़ने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब बुलेटिन का आखिर में मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी में कथित धांधली के मामले में छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनशन की दी चेतावनी। भाजपा ने सीएजी रिपोर्ट पर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार में प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय प्रबंधन का दिखा अभाव। कांग्रेस बोली भाजपा सीएजी की रिपोर्ट पर जनता को कर रही गुमराह। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे 14 आरोपियों को ठहराया दोषी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर झारखंड के सांसदों से किया संवाद, लोगों के बीच जागरूकता लाने का किया आह्वान। और मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची, गुमला, हजारीबाग समेत कई जिलों में बारिश का बताया अनुमान, तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के गीत गुंजन कार्यक्रम में। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट सायका चैटर्जी। दोस्तों आज का दिन हिंदी फिल्म सीने जगत के लिए बेहद खास है क्योंकि आज के दिन यानी कि 13 अगस्त के दिन चार ऐसे सुपर स्टारों ने जन्म ग्रहण किया था जो पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए थे। उनमें से एक है वैजयंती माला, श्रीदेवी, जोगिता बाली और सुनील सेट्टी। आज दोस्तों गीत गुंजन कार्यक्रम में हम इन्हें याद करते हुए सुनेंगे इन्हीं स्टारों पर फिल्माए गए कुछ खूबसूरत बेहतरीन गीत। तो आइए शुरू करते हैं 1967 से जब फिल्म आई थी ज्वेल थी और उसमें स्टार कास्ट थे देवानंद, वैजयंती माला, अशोक कुमार। जिस गीत को आपको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों उसे आवाज दिया है भूपेंद्र और लता मंगेशकर, गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन।

दोस्तों आइए अब हम याद करते हैं सुनील शेट्टी को। आज उनका भी जन्मदिन है। 1995 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था टक्कर। सुनील शेट्टी के साथ पर्दे पर दिखाई दी थी सोनाली बेंद्रे। और जिस गीत को आपको सुनाएंगे दोस्तों अभी अभी, उस गीत को आवाज से सवारा है अभिजीत और अलका याग्निक। गीत को लिखा है माया गोविंद ने, जबकि सुरों में पिरोया है अनु।

दोस्तों 80 और 90 के दशक में युवा दिलों की धड़कन बनी जो अभिनेत्री थी उनका नाम था श्रीदेवी। श्रीदेवी का भी आज जन्मदिन है। दोस्तों आइए सुनते हैं श्रीदेवी का ब्रांडेड सॉन्ग मिस्टर इंडिया फिल्म से जिसे लिया है हवा हवाई। और इस गीत को आवाज दिया है कविता कृष्णमूर्ति ने, लिखा है जावेद अख्तर साहब और धुनों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। आज गीत गुंजन के तहत हमने सुना वैजयंती माला पर फिल्माए गए गीत, हमने सुना सुनील शेट्टी पर फिल्माए गए गीत, हमने सुना श्रीदेवी पर छायांकित किए हुए गीतों को। लेकिन दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम प्रवेश करते हैं एक अन्य कार्यक्रम में। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

दोस्तों जोहार पलामू कार्यक्रम के सबसे पहले आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आज है 13 अगस्त यानी कि ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 13 अगस्त वर्ष का 225वां दिन है और साल में अभी और 140 दिन शेष रह गए हैं। उसके बाद हम 2027 का इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। आइए दोस्तों तब तक इंतजार कर लेते हैं 140 दिन और। अब सुनते हैं 13 अगस्त को ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो अपने बलबूते विश्व इतिहास के पटल पर अपना नाम दर्ज करवा लिया था। तो दोस्तों 1784 की बात करें तो 13 अगस्त 1784 को भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। 1892 को 13 अगस्त के दिन अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ था। इसी तरह दोस्तों 13 अगस्त 1902 को इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की थी। दोस्तों 13 अगस्त 1913 को इंग्लैंड के हैरी ब्रेयरली शेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था और आज पूरे दुनिया में किचन में स्टेनलेस स्टील

की बर्तन न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसकी आविष्कार हुआ था, पहली बार धरती पर आया था 1913 के 13 अगस्त। तब से लेकर अब तक कई परिवर्तन हुए, लेकिन इस दिन को आज भी हम याद करते हैं। दोस्तों 13 अगस्त 1951 की बात करें तो भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी और आसमान पर हिंदुस्तान का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया था। दोस्तों बात करें 13 अगस्त 1956 की तो इस दिन राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था और 13 अगस्त 1977 को अंतरिक्ष शटल के पहले ग्लाइड का परीक्षण किया गया था। 1933 के 13 अगस्त को दो ऐसी घटनाएं घटी थी जो आज भी याद रखा जाता है। पहला तो ये कि वाशिंगटन में इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता संपन्न हुआ था और थाईलैंड के नाखोन राचामीसा में होटल ढह जाने से 114 लोगों की निधन हो गई थी। इस हादसे को लेकर पूरा विश्व शोक जताया था। 1994 के 13 अगस्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच जिनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में ऐतिहासिक सहमति बनी थी। बात करें 1999 के 13 अगस्त की तो इस दिन लेखिका तस्लीमा नसरीन की नई पुस्तक आमार मे बेला मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी दिन खेल के जगत में एक बड़ी उथल पुथल हुई।

बात करें 1999 के 13 अगस्त की, तो इस दिन लेखिका तस्लीमा नसरीन की नई पुस्तक आमार मेये बेला मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी दिन खेल के जगत में एक बड़ी उथल पुथल हुई।

इमरजेंसी लागू हो गई थी। दोस्तों 2015 के 13 अगस्त को इराक के बगदाद में एक ट्रक में बम विस्फोट से 76 लोग मारे गए थे और दो

इमरजेंसी लागू हो गई थी। दोस्तों 2015 के 13 अगस्त को इराक के बगदाद में एक ट्रक में बम विस्फोट से 76 लोग मारे गए थे और

दोस्तों आइए जो हर पलामू कार्यक्रम के तहत फिर से एक बार सुनते हैं जानकारियों की बातों को। तो आपको बताते चले दोस्तों कि 13 अगस्त को किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ था। दोस्तों 13 अगस्त 2000 को सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का जन्मदिन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चिराग सेट्टी के साथ साईराज ने पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1984 के 13 अगस्त को भारतीय महिला मुक्केबाज उषा नगीसेटी का भी जन्मदिन है। प्रसिद्ध राजनीतिक गंगा प्रसाद वर्मा का जन्म भी 1863 के 13 अगस्त को है। और आपको पहले ही

0: आ चुके हैं दोस्तों, भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का भी आज जन्मदिन है और उनका जन्म 13 अगस्त 1936 को हुआ था, जबकि भारतीय अभिनेता निर्माता सुनील शेट्टी का जन्म 13 अगस्त 1961 को हुआ था और भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था, जबकि हिंदी सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक जोगीता वाली का जन्म भी 13 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय अभिनेत्री खाद्य एवं यात्रा लेखिका और टेलीविजन का जाना पहचाना नाम मधुर जाफरी का भी जन्म 13 अगस्त 1933 को हुआ था। इसके अलावा भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का जन्म 1887 के 13 अगस्त को हुआ था। अंग्रेजी और बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक, ये धन के बहिर्गमन के विचारधारा के प्रवर्तक तथा महान शिक्षाविद रमेश चंद्र दत्त का जन्म भी 13 अगस्त 1848 को हुआ था। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं एक नजर उन व्यक्तियों पर जिनका निधन 13 अगस्त को हो गया था। दोस्तों, प्रसिद्ध राजनीतिक तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक सोमनाथ चटर्जी का निधन 13 अगस्त 2018 को हो गया था। भारतीय उपन्यासकार, लघु कथा लेखक तथा फिल्म निर्देशक भवेंद्र नाथ सैकिया का निधन 13 अगस्त 2003 को हो गया था। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी भीकाजी कामा का निधन 13 अगस्त 1936 को हो गया था। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगल का निधन 1910 के 13 अगस्त को हो गया था। और भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का निधन भी 13 अगस्त 1995 को हो गया था। दोस्तों, इन जानकारियों के बातों के साथ आइए फिर से एक बार हम प्रवेश करते हैं मनोरंजन की दुनिया में और अब सुनेंगे आज की बर्थडे गर्ल यानी कि वैजयंती माला की उस हिट फिल्म की हिट गीत को, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और गीत के बोल आप खुद सुन लीजिए। फिल्म का नाम था प्रिंस।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

दोस्तों आप सुन रहे थे इस खूबसूरत गीत को, आइए अब कुछ और बेहतरीन बात करते हैं। दोस्तों आज है 13 अगस्त और आज हम भारतवर्ष में अंग दान दिवस मनाते हैं, ऑर्गन डोनेशन डे। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष 13 अगस्त को अंग दान दिवस मनाया जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अंग दान के महत्व को समझने के साथ ही अंग दान करने के लिए आम इंसान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी संगठन और दूसरे व्यवसाय से संबंधित लोगों के द्वारा हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंग दान दाता कोई भी हो सकता है जिसका अंग किसी अत्यधिक जरूरतमंद मरीज को दिया जा सकता है। मरीज में प्रतिरोपण करने के लिए आम इंसान द्वारा दिया गया अंग ठीक ढंग से सुरक्षित रखा जाता है जिससे समय पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। किसी के द्वारा दिए गए अंग से किसी को नया जीवन मिल सकता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी समय किसी व्यक्ति के मुख्य क्रियाशील अंग के खराब हो जाने के वजह से प्रतिवर्ष कम से कम 5 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौत हो जाती है। वे अभी भी जीना चाहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्राकृतिक संकट की वजह से वे ऐसा कर नहीं पाते। उम्मीदों से ज्यादा एक जीवन जीने के उनके समय को बढ़ाने के द्वारा उनके सुंदर जीवन में अंग प्रतिरोपण एक

लेकिन प्राकृतिक संकट की वजह से वे ऐसा कर नहीं पाते। उम्मीदों से ज्यादा एक जीवन जीने के, उनके समय को बढ़ाने के द्वारा उनके सुंदर जीवन में अंग प्रतिरोपण एवं जीने के उनके समय को बढ़ाने के द्वारा उनके सुंदर जीवन में अंग प्रतिरोपण एक

0: जाके आई है।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। इससे पहले आपने सुना कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल।

0: पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
0: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
1: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
0: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
1: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
0: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
1: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
0: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
1: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
0: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
1: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
0: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
0: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
1: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
1: जी,
0: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे

0: बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
1: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
2: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
3: कौन है?
4: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
3: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
4: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
3: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
4: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
3: ये इस शीशी में क्या है?
4: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
3: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
4: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
3: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
4: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
0: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया।

0: पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
1: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
1: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
0: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
5: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शोरवीर।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुछ

0: दिल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है, बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
1: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे, हम ये अत्याचार नहीं
2: सहेंगे।
3: इस प्रकार

0: इन जंगलों में युद्ध करने का यह पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
1: माय गॉड, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
2: यस सर,
1: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
2: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
1: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
2: थैंक यू सर।
1: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
2: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
1: सिपाही।
2: यस सर।
1: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
2: यस सर।
3: भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भाग

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में और लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
3: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
4: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
3: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर

0: अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
1: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
2: हवाले कर दे?
1: यस।
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
2: ये ले।
3: ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ सर?
0: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
5: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत इतना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली, मुंबई व रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, हिंदी समाचार और विविध भारती द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों को। इसके अलावा हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प लगन और साहस रखता है वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का कल शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर की गई इस पहल का उद्देश्य गांधीनगर कलोल और सांणंद विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बच्चों को पढ़ने की आदत से जोड़ना और उन्हें गांव में ही ज्ञान के व्यापक संसाधन उपलब्ध कराना है। इस ऐप से अब तक 752 पुस्तकालय जुड़ चुके हैं जबकि 280,000 पुस्तकों के भंडार वाले 4 बड़े पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ जोड़ा गया है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलूच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा है कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके असर से आज गंगा के पश्चिमी भाग और उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया, वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा, कीकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बंबई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज से। 4-5 महीने में मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश ने, वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दंभ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा

0: प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज़ में खुद ही रिकॉर्ड किया और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज़ किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान थी, मगर ये था कि मज़ा था उस काम में, बहुत मज़ा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावी जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी। एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह,
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं।

0: तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोचे चल रहा था कि 3 महीने तो जद्दोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें, तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विथ अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था, एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज़ मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ, उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट
0: लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है, तो मैंने मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया, वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं, तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते जाते हैं उनको ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ
1: पंच।
0: हाँ हाँ तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं इसको। तो मैंने कहा
1: बिल्कुल
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिडेक्स सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे
1: लर्निंग
0: एड।
1: कोर्स।
0: हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो वो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने थे।
0: इन आउट इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई, फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं, मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना, ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा

0: शो उन्होंने खरीदा था, वो तो बना नहीं। हाँ,
1: हो
0: मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: से
1: एंड छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज
1: बाद
0: एंड्स
1: में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में आप ना, मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीज़ें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरी जंका, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंका के
1: बिल्कुल
0: अंदर।
1: बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेक्विला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल
1: जी
0: रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली, वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह कर

0: थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, वो 6:01 पे कभी नहीं आए
1: बिल्कुल
0: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
1: बाबा
0: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे, बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह। वरना
0: सब
1: हम अपने सब वालों को
0: सब
1: बता देंगे,
0: सब लोग रोमन सब रोमन में पढ़ते हैं
1: जी।
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्ट्रा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो 11:30 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और वो पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: में कहीं कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया, मैं एनिमेशन से थोड़ा सा

एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो

0: निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला, और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि, और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, 1 नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूं।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बनके रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब, इसके अलावा मुझे पता नहीं कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: मुकद्दर का सिकंदर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: टाइटल ट्रैक कल्याण जी आनंद जी इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है, तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
0: बिल्कुल
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: बनते
1: चाचा
0: बनते
1: चौधरी
0: रह
1: पे
0: जाती
1: शोभा।
0: है,
1: हाँ,
0: मतलब कई बार
1: डोगा
0: अनाउंस
1: डोगा
0: होता है।
1: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म,
0: हाँ,
1: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है।
0: हाँ,
1: हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
0: दौर
1: जो
0: है।

0: दौर है।
1: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करें कि ये चीज़ें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
2: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं
2: जी।
3: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के मेहमान।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना जरा सुनिए कैसे बना ये गाना
3: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें
2: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल
3: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा अब ये क्या उल्टी ही हरकत है हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा देखिए मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर विविध भारती आपका जीवन संगीत रंग

0: लता मंगेशकर की आवाज में मीराबाई का ये भजन आपने सुना, गांधी फेवरेट्स भजन्स बाय लता मंगेशकर, ये इस एल्बम से हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: खुदा अपने वलियों

0: फिजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कादर गुलाम मुस्तफ़ा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफ़ा की आवाज़ें, शौकत अली ने इसे लिखा, AR रहमान का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी

0: नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द बेस्ट ऑफ सजदा, इस एल्बम से हम आपको ये गजल सुनवा रहे थे जिसे साहिद कबीर ने लिखा था। जगजीत सिंह का संगीत और आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। और इससे ठीक पहले आपने टुगेदर इस एल्बम से जगजीत सिंह को सुना, कैफ भोपाली के कलाम के साथ, और संगीत उन्हीं का था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में निधा फाजली का कलाम। खयाम ने इसे संगीत से सजाया और ये है एल्बम आशा और खयाम से हमने इसे लिया है।

0: सितम। इस एल्बम से चंदनदास की आवाज में गजल आप सुन रहे थे जिसे लिखा बशीर बद्र ने।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

लकी अली को आप सुन रहे थे उन्हीं के संगीतबद्ध किए इस गीत में, जिसे लिखा असलम ने और इस गीत को हमने लिया एल्बम सुनो। इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे और रंग तरंग में अब आप सुनने वाले हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से गीत कमाल खान की आवाज, वीके मेहता के बोल और कमाल खान का संगीत।

सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, निदा फाजली ने से लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है मैं हूं ना फिल्म से। सोनू निगम और आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक

0: गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं की फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैयाराजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में नागिन, माफ कीजिएगा, नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश
1: की। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
3: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं।

0: जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवी और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests, over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram Temple donation. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. The BJP today accused the opposition parties of ignoring issues faced by students in Punjab and Jharkhand. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the opposition parties are creating a ruckus in parliament only to avoid questions on student issues of Jharkhand and Punjab. The spokesperson also alleged that senior Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has remained silent on the Jharkhand students' issues. The Calcutta High Court has cancelled all other backward classes or OBCA and OBCB certificates issued under the revised rules introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. The court held that certificates issued under the earlier system have lost their validity. The OBC controversy dates back to the period after 2010, when the then Trinamool Congress government divided OBC communities into two categories, OBCA and OBCB. Allegations of irregularities and corruption in the issuance of OBC certificates subsequently led to legal challenges. The National Biodiversity Authority has released over

0: 15 crore rupees in access and benefit sharing ABS proceeds from Mustard Genetic Resources. The amount will flow to 26 state biodiversity boards and 3 union territory biodiversity councils, with the ABS share calculated based on the area under mustard cultivation in each state. Minister of Foreign Affairs of Liberia, Sara Bessalobanyanti, arrived in New Delhi this morning. She is on a 2-day visit to the country. She will meet Foreign Minister Dr. S. Jayashankar during the day at Hyderabad House in the national capital. The External Affairs Ministry, in a social media post, said the visit provides an opportunity to further strengthen the warm and close ties between India and Liberia. In the U.S., several states are issuing special proclamations to commemorate August 15 as India Day, celebrating India's independence, rich heritage and diversity, as well as the growing contributions of the Indian American diaspora to the American fabric. Delaware is the latest state, following New York, New Jersey and Massachusetts, to issue a proclamation marking India's Independence Day. Delaware Governor Matthew Mayer signed a proclamation and urged all citizens to celebrate India Day. Pakistan Air Force carried out airstrikes in Balochistan Surab district yesterday, killing more than 30 civilians, including women and children, and injuring dozens others. In a statement, Republic of Balochistan Group claimed that Pakistani Army and Air Force carried out extensive bombing and firing in civilian areas of the Gudar locality of Surab and surrounding areas, causing casualties and damage to civilian property. In Canadian Open tennis, American Brandon Nakashima defeated Spain's Rafael Jodar in the men's singles semi-finals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. At the stock market, the Sensex was trading on a subdued note, while the Nifty was moderately lower in the afternoon session today. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोप में छात्रों का आंदोलन जारी। मुख्यमंत्री आवास घेराव की रणनीति के बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। एनडीए सांसदों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद परिसर में किया प्रदर्शन। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का उठाया सवाल, सीबीआई जांच की मांग दोहराई। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित। राज्य सरकारें खनिज पर अतिरिक्त कर नहीं लगा सकेंगी। झारखंड में पड़ेगा व्यापक असर। राज्यभर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा, भारत की आजादी के 80 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का दिया संदेश। और 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड की ओर से भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ी के मामले में छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है। इस मामले की सीबीआई जांच कराने समेत कई मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास घेराव की रणनीति का पता चलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग को उन्होंने दोहराया।
2: देखो, कल देर रात झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या ये एफआईआर जायज है? मुख्यमंत्री आवास को 3-4 किलोमीटर के रेडियस में किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बच्चे हैं कि बिना सीबीआई जांच के मानेंगे नहीं।
1: भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि छात्रों की मांगें पूरी तरह से जायज हैं। वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में पिछले 18-19 दिनों से जिस मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है उस पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

0: लेकिन विपक्ष सरकार की बात सुनना ही नहीं चाहता।
1: सरकार इनको हटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। छात्र जहां बैठे हैं उस टेंट की बिजली काट दी गई। प्रशासन बड़े पैमाने पर तैयारी के साथ पहुंचा था लेकिन व्यवधान हो गया तो हटा नहीं पाया। छात्रों का डिमांड बहुत सही है। पिछले 6 सालों में 10 बार में घुसपैठ हुआ है, लोगों को नौकरियां बेची गई है और अब तो कबूलनामा भी सामने आ गया है। CBI से जांच हो, एग्जाम फुल प्रूफ हो और जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई हो।
0: संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज लोकसभा की कार्यवाही कुछ मिनट ही चली। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान कराया और इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि वहीं सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में आज भी विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विपक्ष नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए तैयार करना है। इस विधेयक में राज्यों को खनिज और खनिज युक्त भूमि के विनियमन को केंद्र के नियंत्रण में लाने का प्रावधान किया गया है। कानून बनते ही झारखंड में इसका व्यापक असर पड़ेगा। ऐसे में झारखंड सरकार खनिजों पर अतिरिक्त कर नहीं लगा सकेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गुमला जिला भाजपा और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि हर घर में तिरंगा झंडा लगे।
2: गुमला में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विशेष आग्रह है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर घर घर पर तिरंगा झंडा लगे। और गुमला वासियों से मैं भी विशेष रूप से आग्रह करता हूँ, इस बार स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाया जाए, हर घर में तिरंगा झंडा लगे।
0: उधर हजारीबाग में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ आम लोगों की भी सहभागिता रही। विधायक ने कहा कि तिरंगा भारत की आन बान और शान तथा क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सर्वोच्च त्याग की अमिट पहचान है।
3: तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सारे बच्चों को आभार, दिल से धन्यवाद। बच्चे इसी तरह से देशभक्ति अपने बीच में जगाए रखें, देश महान था और देश महान रहेगा और इसी तरह के देश भावना से हर घर में अपना तिरंगा लगाए कि धरती पे हर घर पे तिरंगा होगा, चाहे किसी कौम, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के या किसी दल के हो। हर दल के लोग, तिरंगा से बड़ा कोई दल नहीं और देश से बड़ा कोई प्रेम नहीं।
0: देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मऊ भंडार घाटशिला की टीम नरेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में जमशेदपुर प्रधान डाकघर पहुंची। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने डाकघर से 300 राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त किए।
4: प्रधान डाकघर जमशेदपुर में हमारा आने का उद्देश्य है हर घर झंडा के तहत। हम हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से यहाँ पर झंडा लेने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनसे हमने संपर्क किया और 300 झंडा प्राप्त हुआ है। उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि और भी अगर आपको झंडा की जरूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
0: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उपायुक्त और SSP ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से राज्य स्तरीय समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
5: स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल राज्य स्तरीय समारोह यहाँ होगी। झंडोत्तोलन जो होगी उसका हम लोगों ने लगभग संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। 17 अलग अलग प्लेटून्स बैंड पार्टियों को मिला

0: यहाँ भाग ले रहे हैं एक बहुत हर्षोल्लास के साथ। 15 अगस्त की जो तैयारी हम लोग यहाँ कर रहे हैं।
1: उधर सरायकेला खरसावां जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज फाइनल रिहर्सल किया गया। इस दौरान उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने समारोह स्थल में परेड का निरीक्षण किया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,46,000 रुपये प्रति किलो है। 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में पहले दिन विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, फिटनेस और खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया में कुल 797 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोप में छात्रों का आंदोलन जारी। मुख्यमंत्री आवास घेरने की रणनीति के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। एनडीए सांसदों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद परिसर में किया प्रदर्शन। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर उठाया सवाल, सीबीआई जांच की मांग दोहराई। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित। राज्य सरकारें खनिज पर अतिरिक्त कर नहीं लगा सकेंगी। झारखंड में पड़ेगा व्यापक असर। राज्यभर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा, भारत की आजादी के 80 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का दिया संदेश। और 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड की ओर से भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

मिशन कश्मीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें बिल्कुल सही पहचाना हमारे सभी साथियों ने। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूं। वहां हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहां की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे और साथ में ठंडी हवा के झोंके। और रात में बारिश की जो बूंदें होती है वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहां की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है, ऐसा इनका कहना है। वहीं मारिक साथी ने एक दूसरी बात बताई। वो कह रहे हैं कि गंगटोक की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी और सुबह सुबह फोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनंद फानन में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पांव जोड़कर सबको अलग अलग, क्योंकि भूस्खलन से जाम था तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो

ये जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें, क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदें, हवा के रुझान, नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत, इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में से महसूस कर सकें, आंखें भी चलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भाविवल हो जाते हैं, और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना, वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो जरूर महसूस करना चाहिए। जल्द ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले, नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने, मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताजा हुई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं सभी साथी, ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूँ हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूँ, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे साथी कहने की प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कलकल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल, जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छेड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई के सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती हैं। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायल के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। ये सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल हैं जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए, और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहां के झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया।

लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहां मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत जरूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहां वास करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली, कलकल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है। लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई, ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहां जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहां जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहां छोड़ आते हैं, वो हमारे बाद जो लोग आएंगे वहां देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा। या हो सकता है उन्हें लगे कि वहां कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सब थिरकने वाले हैं, हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे, कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है, हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है, सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है, कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है से अनुभव अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत, यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है। संगीत के आदि स्रोत भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं। माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे एक साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा, वो कह रहे हैं छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले जब संगीत के कण कण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। इमासर देसाई और मलेशिया की आवाज़ उम्मीद, जावेद अख्तर ने से लिखा, ए आर रहमान का संगीत। और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी, वो कह रहे हैं कि आज इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत के मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई। डरी सहमी सी कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस ननी गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ ही सेकेंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ ही बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई, गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षण भंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार की सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था, वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो वीसीआर पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग वीसीआर पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है। ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से

जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम छोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम छोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र और चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं, और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते, बादलों में टपकती बूंदों में, रिमझिम बारिशों की फुहारों में, कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए

थोड़ा समय चाहिए क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज में है और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल स्रोतों के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाजें सुनी, बूंदों की आवाजें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहां आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं। और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज में।

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्रकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव भोर कर देती है। और बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीकदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है, मैं चूकता नहीं गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूँ। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौवों का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है, महानगरों कार्य व्यस्तताओं से आजीज होकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, आज दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूं, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये

कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसा ही एक ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं, और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज में।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी

थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: In Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton will face Brandon Nakashima after both Americans advanced in straight sets to the final in Montreal this morning. The final will be played in Montreal tomorrow. American Brandon Nakashima defeated Spain's Rafael Jodar 7-6, 6-4 in the men's single semifinals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Both houses of parliament adjourned sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several U.S. states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day for celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज

0: आज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
1: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
2: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
2: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो,

0: लगातार नारेबाजी और सदन के काम का
1: डिस्कशन से उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने सरकार खुद चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके के लिए विशेष करके संसदीय
0: पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बताया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर तोड़ दिया।
0: राष्ट्रीय

0: आंदोलन रत
1: वेबसाइट www.in पर भी उपलब्ध है।

मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: जाए। मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में देश के 115 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड के लिए गौरव की बात है कि लोक नृत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रांची की बूटन देवी और सोमारी देवी को संयुक्त रूप से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला अब दिल्ली तक गूंज रहा है। एनडीए सांसदों ने आज भी दिल्ली में संसद के मकर द्वार पर झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि शांतिपूर्ण धरना दे रहे छात्रों की मांग सुनने के बजाय सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है।
1: झारखंड सरकार जिद पर अड़ी है और छात्र बहुत शालीनता के साथ अपनी बात अपनी मांग को रख रहे हैं। कोई धरना पे है, अनशन पे है और छात्र सीधा सा कि जो एग्जाम हुआ चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, जेएसएससी का हो, सीजीएल, जो कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसको रद्द करते हुए सरकार सीबीआई जांच कराए।
0: विपक्ष के इन आरोपों पर सत्तारूढ़ झामुमो ने भी तीखा पलटवार किया है। झामुमो सांसद विजय कुमार हांसदा ने दिल्ली में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं, जायज मांगे मान ली गई हैं और लंबित मुद्दों की जांच जारी है।
2: आंदोलन को बीजेपी या कहिए कि ऐसे कई लोग उसमें घुस चुके थे, वीडियोस भी आ रहे हैं। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि उस आंदोलन को धूमिल करना चाह रहे थे। हमारा लक्ष्य यही है कि व्यवस्था सुधरे, शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी हो रही है एग्जाम्स में वो सारी खत्म होनी चाहिए। जो लोग इसमें संलिप्त है उनको हमारी सरकार बहुत स्पष्ट है, हमारे सीएम साहब ने खुद कहा है कि अगर उसकी आज उनके ऑफिस तक आती है तो वहां तक भी जांच होनी चाहिए।
0: इधर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना आज 20वें दिन भी जारी रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने घोषणा की है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए 15 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दो दशक से अधिक समय तक भयंकर नक्सलवाद की मार झेलने वाले पश्चिमी सिंहभूम जिले से आज राहत भरी खबर है। रणनीतिक और समन्वित प्रयासों के बाद अब जिले में एक भी वांछित नक्सली शेष नहीं बचा है। पोड़ाहाट के एएसपी डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि पुलिस अब बुनियादी समस्याओं को सुलझाकर जनता का विश्वास पूरी तरह जीतने का प्रयास कर रही है, जिससे जिले में विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
3: नक्सल समर्थक और ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं ओजीडब्ल्यूज, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। कोई सक्रिय नक्सल बाकी नहीं रहा का अर्थ यह नहीं है कि पूरी तरह अब वो जीरो पे आ गया है, उसको आगे पनपने नहीं देना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। उसी के साथ साथ एक जुड़ी कड़ी है कि जो नक्सल केसेस है उसका प्रोसिक्यूशन भी मजबूती से हो, तो इस पर भी नजर रखी जाएगी। आगे जाके सड़क निर्माण हो, बिजली पानी की सुविधा हो और मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराना हो।
0: राज्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई जिलों में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पाकुड़ में सामाजिक संगठनों, एनसीसी कैडेट्स और भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। वहीं सिमडेगा में माई भारत संस्था की ओर से स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर का भ्रमण किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने राज्यवासियों से अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने की अपील की।
4: युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत

0: सरकार के तहत मेरा युवा भारत सिमडेगा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाले हैं और यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और इसके द्वारा हमारे अंदर सभी के अंदर वो देशभक्ति की भावना को जगाना है और भारत सरकार का जैसा उद्देश्य है हर घर में हम लोग तिरंगा फहराएंगे।
1: राज्य में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। आज खूंटी के कचहरी मैदान में जिला बल, एनसीसी और स्कूली बच्चों सहित 13 टुकड़ियों ने परेड का फाइनल रिहर्सल किया। उपायुक्त और एसपी ने परेड का निरीक्षण किया। इस बार समारोह में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया जाएगा। उधर हजारीबाग के करजन मैदान में भी प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता की उपस्थिति में फुल ड्रेस रिहर्सल का भव्य आयोजन हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है
2: भाई? हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं।
1: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
2: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको
2: जी।
1: और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं और अभी तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12-12, 14-14 घंटे काम होते हैं। तो इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
2: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं इन दिनों तो, क्योंकि ज्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं।

0: कुछ भी, अगर वर्क फ्रॉम होम भी करें तो आप कंप्यूटर और फोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी. तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं. तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती है, भावनाएं अच्छी आती हैं.
1: और कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द तो वो आप भूल जाते हैं
0: जी.
1: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए. तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं, कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें, पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता.
0: बिल्कुल. और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी. और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पैट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज सेवा से वो जुड़ी हैं.
1: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
0: जी,
1: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के तैयार होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना, लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है
0: जी.
1: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना. तो अब
0: दुख में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं. और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें.
1: बिल्कुल. तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर. अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना, ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन मनाया
1: अब
0: जाता है।
1: मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि
0: जी
1: ये जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है।
0: जी
1: अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है,
0: जी
1: तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का
0: पुण्य
1: ईश्वर
0: के
1: की
0: साथ
1: पूजा,
0: जुड़ा,
1: पुण्य की तरह
0: जी
1: पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, न ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।
0: जी
1: और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वां भाई को, उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारे साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थीं लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता
0: हाँ,
1: कितनी है
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता है जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे
0: जी
1: आंख, नेत्रदान।
0: जी
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो
0: जी
1: फॉर्म भर लिया जाता है, और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है,
0: जी
1: उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है,
0: जी
1: करना पड़ता है। तो ये बात होगी, और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं,
0: जी
1: लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए
0: जी
1: कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी
0: जी
1: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी।
0: जी
1: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा, तो ब्लड

डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें कोई भी खतरा नहीं होता है, बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब एक गीत सुनते हैं।

0: नेहा,
1: जी
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रही हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक एक कहानी उन्होंने बता रही कि उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचाकर वो इस दुनिया से गए।
0: क्या बात है, कितनी सजगता की।

0: ये बात है, ये इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है। कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नज़दीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाएं, कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो इससे क्या होता है, वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं। तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं, भले आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें महानगरों में, आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं, मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है, चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो लोग वहां भी जाकर खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो वहां पर खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना ये भी ठीक नहीं लगता है।
1: और कई बार ये भी बताने लगते हैं कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने, कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को बताने लगते हैं, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें। आप कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी एक घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं, और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि इतने लोग आते हैं, उस बीच में अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे, जैसे परिवार में किसी का विवाह, जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर जाते, थोड़ा और रुक जाते, ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचें तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना, मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते हैं,
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं, तो ज्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए ये कीजिए, तो

0: तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
1: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना
0: जी
1: ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है। असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं।
0: जी
1: जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई
0: जी
1: जरूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने
0: जी
1: श्रोताओं को।

0: आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए जरूर कुछ लेते जाएं, बाकी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल, और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी। जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए, शांति से उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदार

0: के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं। शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूं शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूं या ना हो सकूं किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूं।
0: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते हैं शादी ब्याह में, तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किनसे बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
1: अब नेहा, ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन
0: जी
1: बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।
0: जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुकीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसलिए पैट्रिशिया मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।

0: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था। और तो और, स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
1: और आखिरकार पैट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर। और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
0: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुखिम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए। और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
1: बिल्कुल। और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया। और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया। और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती। तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर ये हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुखिम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
0: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए। इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुखिम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रहीं, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
1: जी। और पैट्रिशिया मुखिम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुखिम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
0: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुखिम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
1: और तकरीबन 70 वर्ष की पैट्रिशिया मुखिम हमें सिखाती है कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
0: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पैट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
1: जी।
0: अब गाना सुनते हैं ये।

0: सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे, हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं, उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूं। अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VVS के प्रोग्राम सुनता रहता हूं, ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है, इस शौक को आप कायम रखिए, लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्या
1: कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो के साथ सब चीजें की जा सकती है, ऐसा ही तो मतलब हमने शुरुआत से ऐसे ही तो सब बड़े हुए हम सब,
0: सही बात,
1: रेडियो सुनते सुनते सारे काम करते करते।
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय,
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है। एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे। ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं, तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ, पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए भी समय निकल ही जाता है, और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है, वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मे संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिया जुल्मे संग आंख लड़ी। 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे, अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं। तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो इनको स्पष्ट कर दे कि आज कोई शोक का दिन नहीं है, ये तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई, कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहाँ पर शिष्टाचार की बात है
1: जी, तो लेकिन ममता जी एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी
0: बिल्कुल,
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है, और जिन्होंने नहीं सुना हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है, बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है, अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है
1: जी, तो इस शौक से मुक्ति पाना जरूरी है,
0: बचें, क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल, और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए, खासतौर से छोटे बच्चों के भीतर कई और हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं

0: तूने लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और
1: बिल्कुल।
0: बच्चे को उनके शौक पूरे करने दें, है ना
1: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है।
0: जी।
1: कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के

0: जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से ऊपर सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार, तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूं, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई।
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको,
1: जी
0: जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली,
1: जी
0: विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं, और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रहे, गमन फिल्म
1: जी
0: की गजल जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था, छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था,
1: जी
0: तलफ्फुज़ का बड़ा ख्याल रखती है वो
1: जी
0: कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो,
1: हाँ
0: तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा, और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे,
1: जी
0: तो ये बड़ी बात है। हमने उनका नाम इसलिए यहां पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए,
1: जी
0: लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र
1: उम्र
0: नहीं
1: नहीं
0: होती
1: होती,
0: है, और गाना सुनवाने के लिए भी
1: कोई समय नहीं होता।
0: सुनते हैं गाना।
2: जब सदा संग रहे ना।

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं,
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहां भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा।

0: और जहाँ कीड़े ने काटा हो वहां पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, कि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए, और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
1: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाएं नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के
0: जी
1: हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है, या फिर डिटॉल वगैरह उस पर
0: जी
1: लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है,
0: जी
1: क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि वो कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
0: जी और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसी सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे, या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं या अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहने, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है कीड़ा वगैरह काटता है तो उस जगह को खुजलाए नहीं, अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
1: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या
1: जी
0: गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में झारखंड के तीन कलाकारों को आज सम्मानित किया। सरायकेला के प्रसिद्ध छऊ मुखौटा शिल्पकार गुरु सुशांत कुमार महापात्रा को उनके अद्वितीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं रांची के बुंडू की सगी बहनों बूटन देवी और सोमवारी देवी को पारंपरिक नचने नृत्य परम्परा को जीवित रखने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला अब दिल्ली तक गूंज रहा है। एनडीए सांसदों ने आज भी दिल्ली में संसद के मकर द्वार पर झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इधर रांची में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना आज भी 20वें दिन जारी है। पलामू में सूखे और भीषण गर्मी के बीच कृषि कार्यों को बचाने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। जिले में 87 मेगावाट बिजली की कमी को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सिंचाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें विद्यालय के समग्र विकास, शैक्षणिक गतिविधियों और निर्माणाधीन भवन की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को स्कूली व्यवस्थाओं और संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खूंटी में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। खूंटी क्लब से शुरू होकर यह यात्रा विभिन्न चौक चौराहों से गुजरी। आकर्षक ड्रम सेट और देशभक्ति धुनों के बीच स्कूली बच्चों और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: 3 एकड़ जमीन है, 10 क्लास तक पढ़ा हूं मैं भी।
2: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
1: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे पढ़ के, लग गया हम फिर।
2: अच्छा
1: तो
2: चलो,
1: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
2: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपनी खेती बाड़ी से समय निकाल के।
1: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
2: अरे क्या बात है।
1: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
2: कराइए।
3: हेलो मैडम।
2: हेलो, क्या नाम है आपका?
3: हाँ, मीरा भाई है मेरा नाम।
2: अरे मीरा भाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा भाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा भाई के ये भजन सुनिए। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
3: हाँ, घर संभालते, खेती में भी काम करते।
2: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
3: हाँ।
2: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
3: महिला किसान का अनुभव ये है कि भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास?
3: हाँ, एक भैंस है, 2 बैल है।
2: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको?
3: हाँ, करें ने, भैंसी दूते, चार पीते।
2: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
3: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है जी।
2: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
3: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
2: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्री देव और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, नेपाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं, हम तो को तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
2: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
1: जी जी, भस्मी लगाए तन पर कहते है जिनको शंकर, पीते है भंग के प्याले, कहते है डमरू वाले।
2: बहुत सुंदर गाया, दिल में तुझे बिठाकर, है ना। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैम। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप?
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर, बताइए इसके बारे में। हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है। तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ। और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना?
1: जी बहुत सारा।
0: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए, पहनने के लिए, बता सकती हैं आप?
1: जी, यह खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला।
0: रसगुल्ला?
1: जी।
0: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना
1: तो
0: सुनेंगे
1: मैम
0: आप?
1: मुझे गाना सुना दीजिए, लता दीदी की आवाज में। जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है सावन के झूले पर।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ ठंड तेज हो जाती है ना?
1: हाँ ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास
1: हाँ।
0: पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रंग, कश्मीरी रंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं
0: तो अभी आप
1: वो,
0: कावा पीते
1: माशाल्लाह।
0: हैं?
1: कभी कभी पीते हैं तो वही तफ वगैरह बुखार, उस पे भी हम वो यूज करते हैं तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
0: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
1: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लिप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
0: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं।
1: हाँ नून चाय।
0: नून चाय,
1: हाँ
0: ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
1: हाँ ये गुलाबी बनते हैं, इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उन पे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होते ये भी
0: पहले जैसा।

0: स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन-सहन कैसा है?
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक,
0: बिल्कुल
1: बढ़िया
0: सुनते हैं,
1: मजा आता है।
0: बिल्कुल। बताइए, गाना बताइए।
1: मैडम, हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, पंच सुर में गाते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदी? यहाँ
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं नहीं
0: क्या फसल
1: अभी
0: बोई आपने
1: फसल,
0: अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा है इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर?
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
0: अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है,
0: ठीक है,
1: 4 महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन, और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की

0: कर सकते हो उस जगह पर। कई
1: अच्छा
0: कई किसान करते हैं वही चीन खेती।
1: अच्छा यानी बारो मासी कुछ ना कुछ खेत
0: हाँ
1: में डाला ही जाता
0: ऐसा
1: है।
0: है, पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है सब
1: हाँ
0: फसल।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना कोई फसल रहती ही है।
0: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह की अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना, उन कर लेंगे।
1: अच्छा चलिए तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
0: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
1: हाँ सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
0: मजदूर भी रहते दीदी, उतना पैसा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती।
1: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
0: हाँ कैसा है, जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
1: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाएं आपको? तो
0: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा तू एक
1: एक रानी है, चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई?
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन था, छोड़ो भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
0: आप भी गाते हैं देशगान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए।

0: काकी।
1: जय होस्तुते जय होस्तुते श्री महान मंगले दिवासपदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती स्वामहं यशोयुता वंदे।
0: बहुत सुंदर।
1: अरे गाने मजसी ने परत मातु भूमिला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा सागरा।
0: बहुत अच्छा।
1: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है ये मेरा इंडिया आई लव माय इंडिया वतन मेरा इंडिया सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
0: जी।
1: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
0: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी। हेलो फरमाइश।
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनितपुर आसाम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा, ये बताइए, अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है,
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराईदेव आसाम में हुआ था ऐसे बार, बहुत लोगों की जान भी चली गई है, और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये।
0: जी जी,
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनितपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा।
1: और आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्की से बारिश आते है।
0: हाँ, और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इसे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा
1: और
0: आपने।
1: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलते ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी, तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
1: आसाम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है?
1: हमारे असम के सबसे ज्यादा सोनितपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं, उसमें ज्यादा फेमस है ये। और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम उसकी पिक्चर्स देखते हैं, तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी।
0: तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में।
1: जी जी जी, वीर जरा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है, और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से।
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है।
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: मैम पता नहीं है उन्होंने क्या सोच के रखा है, पता नहीं। मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ मैम।
0: अभी तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो गई जरूर समझूंगी क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे
1: हाँ
0: एक
1: मैम,
0: बात बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो,
0: कौन सा?
1: कर्मा फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम
1: हाँ
0: जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए
1: हाँ मैम,
0: हमारा।
1: बिल्कुल ईमानदारी रहना चाहिए और सब
0: हाँ,
1: लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना
1: हाँ
0: बचपन याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है, सभी सोचता होगा।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश होना बहुत जरूरी है। चलिए,
1: और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं और सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है?
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने।
1: हाँ जी खास विशेषता है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं।
1: जी
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: जी
0: कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही है?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी, कैसे हैं आप?
1: बस बस मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: तो पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है, तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो, बाद में और टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है, आप एज ए लिसनर एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसर्गन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
1: एक ही रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने के
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है, अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरे 77 अभी पूरे होने वाले हैं
0: 77,
1: सितंबर।
0: इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना?
1: कुछ हद तक बजा लेता हूँ,
0: बहुत
1: मैं ऐसा
0: अच्छा,
1: नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ
0: लेकिन
1: एकदम।
0: इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
1: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले तो होते, सरोज
0: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: चौधरी का संगीत है और
0: सलील
1: विमल
0: साहब
1: रॉय की फिल्म और शशि कपूर और साधना की अदाकारी है।
0: जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते हैं गिरधारी जी?
1: जी मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है, मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं जो है रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा।
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्में उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड है फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
0: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना?
1: हाँ,
0: जा सकता है निडल लगा के?
1: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
0: क्या बात है, चलिए,
1: का काम चल रहा है सारा।
0: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आप गिरधारी जी? आप
1: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में झारखंड के 3 कलाकारों समेत देश के 115 विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। इनमें सरायकेला के

0: प्रसिद्ध छऊमुखौटा शिल्पकार गुरु सुशांत कुमार महापात्र और रांची के बुंडू की नचनी नृत्य कलाकार बुटनी देवी व सोमरी देवी शामिल हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जीएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना आज 20वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी छात्रों ने घोषणा की है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए 15 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे। दो दशक से अधिक समय तक भयंकर नक्सलवाद की मार झेलने वाले पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब तक भी एक भी वांछित नक्सली शेष नहीं बचे हैं। पुलिस अब बुनियादी समस्याओं को सुलझाकर जनता का विश्वास पूरी तरह जीतने का प्रयास कर रही है, जिससे जिले में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा परिसर में 17 से 24 अगस्त तक जनजातीय गौरव उत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस उत्सव में राज्यों की महिला उद्यमी स्वदेशी उत्पादों के 100 स्टॉल लगाएंगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य भर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। खूंटी में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अगुवाई में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने देशभक्ति धुनों के बीच विशाल रैली निकाली। पाकुड़ पुलिस ने अभियान जीवन के तहत महेशपुर और पाकुड़िया में छापेमारी कर दो व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 3.25 किलो गांजा, सैकड़ों पैकेट और दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम सभी करते हैं, लेकिन अपने देश की माटी से, अपनी मातृभूमि से जिसने प्रेम किया, उन्हें आज हर कोई सैल्यूट कर रहा है। गीतकार की कलम में इतनी ताकत होती है कि उनकी कलम से निकले गीतों से वतन परस्ती का सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। आजादी के परवानों की जिंदगी में मकसद को बयां करता ये गीत आज भी सर चढ़कर बोलता है। गीतकार रामप्रसाद और प्रेम धवन ने इसे कलमबद्ध किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।

नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा सा गीत। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, देश के गौरव और संस्कृति की महानता को दर्शाता ये गीत। ये आह्वान करते हैं सभी गीत कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसकी माटी को नमन करते हैं। गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकली रचनाओं ने देश प्रेम को दर्शाया और कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो उतार ला जमीन पर।

इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल

एक गीत नहीं था बल्कि एक आंदोलन था, आंदोलन। उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम, सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गई हमें। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जब

और साहिर लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीतकार ये शायर केवल इश्कबाजी पर ही अटके रह जाते तो शायद उनकी कलम ये विद्रोह कभी ना कर पाती, ये गीत कभी ना उकेर पाती।

अब आइए डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर में यानी 5:35 पर हम आपको सुनाएंगे युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। इस प्रोग्राम में आप सुनिएगा अश्मि पांडे की वार्ता, विषय होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हुनर के साथ बदलता भारत। और इसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ध्वज और हमारी क्या जिम्मेदारी होती है इस विषय पर, और फिल्मी गाने तो इस प्रोग्राम में बजते ही हैं। शाम 6 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा प्रादेशिक मुख्य समाचार। छह बजकर 2 मिनट पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:30 पर हम आपको सुनाएंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

6:55 पर हम शाम में होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7 बजे आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से। एक रंग फिल्मी गीतों का यह प्रोग्राम आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम उजाले की ओर। रात्रि 8 बजे हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा। चित्रपट से ये प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे 8:15 पर। क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनिएगा सरहदें 8:30 से। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज 8:09 रात्रि 9 बजे और उर्दू में खबरें 9:15 से। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनिएगा 9:30 पर। 10 बजे से आप सुनिएगा संसद में हुई प्रश्नकालीन की रिकॉर्डिंग। 11:30 हिंदी में समाचार और 11:05 पर। हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे 11:10 पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

ये वाणी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संजय सिन्हा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज है 13 अगस्त और कल के बाद यानी परसों दिन यानी 15 अगस्त को हम सभी अपना तिरंगा फहराएंगे। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन हम सभी अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज भी का जो ध्वजारोपण होता है उसे हम सम्मान देते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा मान और शान का ये प्रतीक है और संविधान में इसे 51A के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर भारतीय का नागरिक का मौलिक कर्तव्य बताया गया है। इसका सम्मान करने का अर्थ है देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखना। हमारा कर्तव्य है तिरंगे फहराते समय हमेशा कसेरिया रंग जो होता है ऊपर सफ़ेद बीच में और हरा रंग नीचे होता है, यह सफ़ेद तिरंगा का जो रंग होता है, और जमीन से स्पर्श कतई भी न होने दें राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज का कोई भी हिस्सा जमीन या फर्श को नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज जो है प्लास्टिक या क्षतिग्रस्त झंडों का उपयोग न करें। फटे पुराने झंडों को आदरपूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि जो झंडे पुराने हो जाते हैं उसे ही हम फहराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो झंडे पुराने और फट जाते हैं उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। झंडे का उपयोग कपड़े, नैपकिन, वेशभूषा या पार्टी की सजावट के लिए कतई न करें। तिरंगा हमारी पहचान है और संप्रभुता का प्रतीक है। इसका आदर करना हमारे देश भक्ति और संस्कारों को दर्शाता है। हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ऐसा नहीं कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान करें। हमेशा जहां भी कहीं राष्ट्रीय ध्वज मिले इसे सम्मान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है, हर भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि इसका हम सम्मान करें और आने वाले 15 अगस्त के दिन इसे हम फहराएं और देश जो हमें आज़ाद हुआ है, जो आज़ादी मिली है, इसे हम उत्साहपूर्वक मनाएं। देश में जो रहते हैं उन्हें देश प्रेम होता ही है, लेकिन जो परदेश में चले जाते हैं उनका देश के प्रति यथा प्रेम उमड़ता है। अपने संदेशों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से वे हमेशा देश को याद करते हैं, यहाँ की मिट्टी को याद करते हैं, यहाँ की परंपरा को याद करते हैं।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम आपको सुनाते हैं एक वार्ता। विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुनर के साथ बदलता भारत। वार्ताकार हैं रश्मि पांडे।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुनर के साथ बदलता भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

अर्थ है बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मेकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। AI भारत के संदर्भ में, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित एक नए युग की कगार पर खड़ा है, जहां प्रौद्योगिकी जिंदगियां बदल रही हैं और देश की प्रगति को आकार दे रही हैं। AI अब केवल शोध प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, यह हर स्तर पर नागरिकों तक पहुंच रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा एवं पहुंच को बेहतर बनाने से लेकर किसानों को फसल के बारे में पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने में मदद करने तक AI दैनिक जीवन को सरल, स्मार्ट और अधिक कंडक्टेंट बना रहा है। यह व्यक्तिगत शिक्षा के माध्यम से कक्षाओं में क्रांति ला रहा है, शहरों को साफ और सुरक्षित बना रहा है और तेज डेटा आधारित शासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बना रहा है। इंडिया AI मिशन और AI उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहले इस परिवर्तन के केंद्र में है। ये कंप्यूटिंग पावर तक पहुंच का विस्तार कर रही है, अनुसंधान का समर्थन कर रही है और स्टार्टअप्स तथा संस्थाओं को ऐसे समाधान तैयार करने में मदद कर रही है जिनसे लोगों को सीधे लाभ पहुंचे। भारत का दृष्टिकोण AI को खुला, किफायती और सुलभ बनाने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नवाचार समाज को समग्र रूप से उन्नत करे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वह क्षमता है जो मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाती है। AI डेटा, सेट एल्गोरिदम और बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके जानकारी का विश्लेषण करता है, पैटर्न पहचानता है और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। समय के साथ ये सिस्टम्स अपनी प्रदर्शन क्षमता में सुधार करती है, जिससे वे मनुष्यों के समान तर्क कर सके, निर्णय ले सके, संवाद कर सके। यह समावेशी दृष्टिकोण नीति आयोग की रिपोर्ट समावेशी सामाजिक विकास के लिए AI अक्टूबर 2025 में भी परिलक्षित होता है। रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे AI भारत के 49 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन तक पहुंच प्रदान करके सशक्त भारत बना सकता है। यह रेखांकित करती है कि AI आधारित उपकरण लाखों ऐसे लोगों की उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ा सकते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि प्रौद्योगिकी गहरी सामाजिक और आर्थिक खाइयों को पाट सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि AI के लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। वर्तमान में भारत में AI इकोसिस्टम, भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 2,80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। प्रौद्योगिकी और AI इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र है, जिनमें 500 से अधिक

एआई केंद्रित है। भारत में लगभग 1,08,000 स्टार्टअप्स है और पिछले वर्ष लॉन्च हुए नए स्टार्टअप से लगभग 79% ने अपने उत्पादों का सेवाओं में एआई का उपयोग किया। निस्कॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत ने 4 में से 2.45 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं। एआई अपनाने में अग्रणी क्षेत्र है। औद्योगिक और ऑटोमेटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा और स्वास्थ्य सेवा, ये मिलकर एआई के कुल मूल्य का लगभग 60% का योगदान करते हैं। हाल ही में किए गए एक बीसीजी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 26% भारतीय कंपनियां ने बड़े पैमाने पर एआई परिपक्वता हासिल कर ली है। जैसे जैसे भारत एक समा

0: है जो इसके डेवलपर समुदाय की मजबूती को दर्शाता है। एक मजबूत स्टीम विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी गणित कार्यबल विस्तृत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत आर्थिक विकास सामाजिक प्रगति और 2047 तक विकसित भारत के दीर्घकालिक विजन को साकार करने हेतु एआई का उपयोग करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। इंडिया एआई मिशन भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई को कारगर बनाना के विजन से प्रेरित होकर कैबिनेट ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अपनी शुरुआत के बाद से ही इस मिशन ने देश के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है। 10,000 जीपीयू के शुरुआती लक्ष्य से अब भारत ने 3,000 जीपीयू हासिल कर लिए हैं, जिससे विश्व स्तरीय एआई संसाधनों तक किफायती पहुंच उपलब्ध हो रही है। इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभ है। पहला, इंडिया एआई कंप्यूट स्तंभ। दूसरा, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल। तीसरा, एआई कोश डेटा सेट प्लेटफॉर्म। चौथा, इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल। पांचवा, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। छठा, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग। सातवां, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। 18 सितंबर 2025 को भारत ने इस आयोजन के लोगों और प्रमुख पहलों का अनावरण किया। प्रमुख पहले इस प्रकार है, एआई पिच फेस्ट उड़ान, युवाओं महिलाओं और अन्य प्रतिभागियों के लिए वैश्विक नवाचार चुनौतियां, अनुसंधान संगोष्ठी, एआई एक्सपो, शिखर सम्मेलन के लोगों और प्रमुख पहलों का अनावरण करने वाले इस कार्यक्रम में भारत विशिष्ट डेटा का प्रशिक्षित स्वदेशी एआई मॉडल बनाने हेतु 8 नए आधारभूत मॉडल पहलों का भी शुभारंभ करेगा। एक अन्य प्रमुख फोकस एआई डेटा लैब्स पर था, जिसमें पूरे भारत में 30 लैब्स की शुरुआत की गई, जिससे 570 लैब्स का नेटवर्क बना। पहली 27 लैब्स राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के साथ साझेदारी में स्थापित की गई। ये लैब्स इंडिया एआई मिशन की फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत आधारभूत एआई और डेटा प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के दौरान इंडिया एआई फेलोशिप प्रोग्राम और पोर्टल का भी विस्तार किया गया, जिसमें 13,500 स्कॉलर्स को सहायता मिल सके, जिसमें सभी विषयों के 8,000 स्नातक, 5,000 स्नातकोत्तर और 500 PhD शोधकर्ताएं शामिल हैं। अब इंजीनियरिंग, चिकित्सा कानून, वाणिज्य व्यवसाय और मुक्त कला जैसे क्षेत्रों के छात्रों के लिए फेलोशिप उपलब्ध है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रश्मि पांडे की वार्ता, विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हुनर के साथ बदलता भारत। आप सुन रहे हैं युवा साथियों को संबंधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। बातें करेंगे कुछ सड़क सुरक्षा संबंधी। सड़क की यातायात सुरक्षा का मतलब उन तरीकों और नियमों से है जिनका उपयोग सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों और मौतों को रोकना है। अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो कुछ सावधानी हमें बरतना चाहिए। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट बांधे और दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जरूर पहने। गति सीमा, वाहन हमेशा तय की गति सीमा में ही चलाएं, तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनता है। और नशे की हालत में गाड़ी को जो है वाहन को कतई न चलाएं, इससे क्या होता है कि आप नियंत्रण खो जाते हैं और दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। बाइक चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कतई न करें। फ़ोन का, अगर आप बाइक चला रहे हैं उस समय अगर

आपका मोबाइल बजता है तो आप अपने बाइक को किनारे लगा दें और रुक कर बातें करें। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चलाते चलाते बात करें, यह हो सकता है कि आपका दिमाग ध्यान भटक जाएगा और आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। और हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लाल बत्ती

जहाँ सड़क की बाईं ओर या फुटपाथ पर चले। सड़क हमेशा जेबरा क्रॉसिंग या सिग्नल देखकर ही पार करें। सड़क पार करते समय फोन या ईयरफोन का उपयोग न करें। और क्या है कि वाहन का रख रखाव भी इसका मुख्य कारण होता है दुर्घटना। अपने वाहन का जो है ब्रेक, टायर, लाइट और इंडिकेटर की समय समय पर जांच और सर्विसिंग करवाते रहें। सुरक्षा केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक होता है। तो इन सब बातों के साथ ही हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा कुछ ही पलों में प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और विवादों के बीच उन्होंने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले पर अब आगामी 25 अगस्त को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो की 14 वर्षीय लापता बच्ची के मामले में राज्य सरकार से सीबीआई जांच पर आपत्ति या सहमति को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। अक्टूबर 2020 से लापता बच्ची के सोशल मीडिया अकाउंट के सक्रिय होने और क्रॉस बॉर्डर मामले की आशंका के चलते कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। राज्य में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका समेत राज्य के सभी जिलों में आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। आगामी 15 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। सरायकेला खरसावां के सामुडी गांव में आज जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जल संरक्षण और सुरक्षित पेयजल के उपयोग की शपथ ली। अधिकारियों ने पानी की बर्बादी रोकने और जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर संचालन में सामुदायिक भागीदारी की अपील की।

0: होगी। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आज सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी है। वहीं सरायकेला, गुमला, खूंटी, रांची और हजारीबाग सहित मध्य व उत्तर पश्चिमी भागों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: माटी बचाओ जैविक अपनाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाइया सो भाई बहन मन के जुगनी बहन और
0: रौर मन कर रेडियो संगी मनोज कर
1: जोहार।
0: और ये कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: हर जोग

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और बहन बताओ का हाल चाल मन है, किसन खेती बारी मन चलत है?
7: एकदम सब नगदे नगद है। राउर बटले कैसन है, खेती बारी सब तो बढ़िया आए। राउर बटकर हाल समाचार सुनाओ कैसन है?
6: हमारे बटे में बढ़िया बहन, देखो नी खेती बारी तो अखन ठीके ठाक हुआ था, बरखा पानी में भी बढ़िया हुआ है। और संगे संगे देखो हमरे मन तो धान कर खेती करी ला, और संगे संगे हमरे मन सब्जी मन भी उगाई ला, और सब्जी कर संगे बहुत सारा ऐसा खेती बारी है, और संगे संगे पशुपालन भी करी ला, तो हमरे मन मेसा करके खेती बारी करी ला। रोर मन के कैसे खेती बारी में होला?
7: रोरे जैसा खेती करी ला वही नियर हमरे दन हो खेती करी ला, सब मेसा खेती करी ला। और देखो एखन खेत में धान लगा ही, और धान का रोपनी भी हो गलक है, और देखो गोटा हरियर भी हो गया, और निकाई गोड़ाई कर भी बेरा हो गलक है। और देखो निकाई गोड़ाई कर पाछे खाद उकर प्रयोग हमरे के करे है।
6: तो बहन देखो हमरे मन कर गांव में नहीं, बगरा से बगरा हमरे मन जैविक खाद कर प्रयोग करेला, ताकि देखो जैविक खाद से क्या होल कि खेती बाड़ी बढ़िया होला, और संगे संगे हमरे मन का जीव स्वांग है वह मन बढ़िया रहे। और मन कैसे खेती बाड़ी करे?
7: और देखो खाद कर और प्रयोग करेला जैविक खाद कर, तो देखो इकर से फसल कर जो बूदा होला बड़ा बेस बनेला, और फसल जे होवेला बड़ा सुंदर होवेला, और इकर में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में भेटाएला।
6: सही बात है बहन, देखो कहे ना कि रासायनिक खाद से तुरते फायदा होला लेकिन बाद में नुकसान होला, और जैसे कि जैविक खाद धीरे धीरे फायदा करे कि अगला पीढ़ी तक फायदा करते रही। फायदा कर बात करेला तो फायदा के कारण बहुत सारा चीज है, जैसे रोटे बता ली। और संगे संगे यो है नी बहन कि पानी की रोकेला, जैसे कि कहले कि अगर सूखा होत है तो से बेरा भी बढ़िया से खेती बाड़ी होवेला। और जैविक खाद कर हमरे मन बात करे थे, जैविक खाद हमरे मन घर में बनाए सकेला, चूंकि एकर में खर्चा कम आवेला, और हमारे कर घर आसपास में कहब तो गोबर हो गलक, संगे संगे पतुर मन हो गलक, सब मिसा मिलाए के हमरे मन खाद मन के बनाई ला।
7: रौरे नगद गोइठ कहली कि जे खरपतवार है से मन कर सड़न से, और गोबर खाद ये मन कर सड़न से सो मेसा हो जाला, तो बड़ा नगद खाद कर
6: तैयार हो जाए
7: तैयार होवेला।
6: और बहन देखो जैसे कि हमरे मन बात कर थी जैविक खाद कर, तो जैविक खाद हमरे मन घर में खुद बना सकेला, जेकर में है कहने कि गोबर खाद है जे कि हमरे मन वर्मी कंपोस्ट कर नाम से जानीला, और संगे संगे जीवामृत है, घन जीवामृत है, और

0: किचन वेस्ट जकर जे सामान मन निकलेला ओकर से हमरे मन खाद बनाए सकेला, जकर में है चाय पत्ती हो गेलक, सब्जी कर छिलका मन हो गेलक, इकर से हमरे मन खाद बनेला है कि नहीं।
1: बिल्कुल, तो रोरे नगद गोइठ कहली कि हमरे के कोनो सब्जी हमरे उत्पादन करा थी तो उत्पादन सब्जी से जे हमरे किचन में उपयोग करा थी और वो जो बर्बाद हुआ थे सेकरों से हमरे उकर खाद में प्रयोग कर सकेला और उकर से हमरे लाभ ले सकेला। और अगर हमरे जैविक खाद से उपजल जे फसल के हमरे सेवन करेला तो हमरे कर जीव स्वांग भी बढ़िया रहेला, हमरे कर जीव गतर बेस रहेला।
0: हमरे कर जीव स्वांग बेस रहे तभी नहीं हमरे मन खेती बाड़ी बढ़िया से करब और आगे बढ़ब और दूसरे के भी बढ़ाब है कि नहीं।
1: एकदम, जैविक खाद कर प्रयोग अगर हमरे करब तो हमरे कर पर्यावरण भी बेस रही तो हमरे कर जीव स्वांग भी बेस रही।
0: और बहन देखो जैसे कि पर्यावरण कर बात कर रही थी और एखन बरखा पानी कर दिन है और ये बरखा पानी कर दिन में जाने लाने कि फल वृक्ष कर हमरे मन बगरा से बगरा लगाईला अपन खेत मन में और बढ़ोतरी बढ़िया होला, लेकिन संगे संगे देखो इकर हमरे मन के देखभाल भी जरूरी है कि नहीं।
1: देखभाल नगद करब तो हमरे के फल बगरा भेटाई और हमरे कर आमदनी भी बगरा होगी। तो हमरे के आमदनी बगरा लेवे खातिर उकर ध्यान भी देवे के फल वृक्ष मन कर जतन भी करे के। तो भाई बहन मन इन करे बारे जानकारी दे बाय विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद लाल और इनकर से गुठिया बाय प्रभु शरण।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर हेमचंद लाल, अध्यक्ष पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, और आज हम बात करने जा रहे हैं फल वृक्षों के बारे में, फलों के बारे में। झारखंड राज्य में अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो प्रमुख फल हैं जिनकी खेती की जाती है यहाँ, उसमें आम है, अमरुद है, पपीता है, नींबू है, इसी तरह के फल प्रायः लोग इसकी खेती करते हैं और ये मार्केट में उपलब्ध भी कराया जाता है। तो इन फल वृक्षों का, बगानों का, या जो शौकिया भी इन फलों का उत्पादन करते हैं, तो उसमें रोग नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार किसान भाई, जोहार।
2: अगर हम आम की बात करें तो इसमें प्रमुख कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लक्षणों के बारे में भी बता दें।
3: जी किसान भाई, आम में, पौधे में, वृक्ष में जी मुख्य रूप से जीवाणु जनित झुलसा और कैंकर रोग है, दूसरा चूर्णी लाशिता है, तीसरा बीमारी जिसको कि हम एंथ्रेक्नोज के नाम से जानते हैं, और देखते हुए होंगे कि आम का जो ऊपर वाला भाग है वो कभी कभी काला पड़ जाता है जिसको कि हम ब्लैक टिप भी कहते हैं मैंगो में। ये इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको कि हम लोग मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख रूप से जो भी किसान भाई आम का पेड़ लगाए हुए हैं उसमें ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो अब है कि जीवाणु जनित जो झुलसा और कैंकर रोग है उसको हम कैसे पहचाने?
2: ये सर अभी आप जो जिस रोग के बारे में आपने बताया उसको देख कर कैसे पहचानेंगे?
3: हाँ, तो है कि जब आप संक्रमित पौधे को जीवाणु जनित झुलसा एवं कैंकर रोग में देखेंगे तो पाएंगे कि पेड़ के पत्तों के ऊपरी भाग पर जो है थोड़ा सा वाटर सोक्ड लेजन बनता है, जो पत्ती है उस पर पानी जैसा होगा और वो वहाँ सूखना शुरू हो जाता है।
2: अच्छा।
3: और वो लेजन्स जो है एक लेजन दूसरे लेजन से मिलते हैं और फिर फैल कर भूरा और काला हो जाता है वो जगह। तो इस तरह का लक्षण जब आपको पता चले तो इसको आप समझिए कि ये जीवाणु जनित झुलसा या कैंकर रोग है। इसमें अगर आप एक दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm माने 1 gram दवा 5 liter पानी में
2: जी,
3: अगर तीव्रता कम है तो 1 gram दवा 10 liter पानी में, 100 ppm से हम लोग कहते हैं कि 200 ppm तक इसको ये करना चाहिए, और एक बार इसका छिड़काव कर दिया जाए 15 दिन के उपरांत जो है एक दवा है ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50, ये भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें तत्व है, केमिकल तत्व है, ये 3 gram प्रति लीटर पानी से छिड़काव कर देने से, 2 बार छिड़काव करने से इस बीमारी से किसान भाई जो है
2: निजात पा सकते हैं,
3: फल वाले वृक्ष को निजात में ला सकते हैं
2: जी।
3: दूसरा एक कहते हैं अंग्रेजी में जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णी लाशिता, इसमें किसान भाई संक्रमित पेड़ के पत्तियों पे आप देखेंगे कि टेलकम पाउडर जैसा जो है पूरा पाउडर बिखरा पड़ा मिलता है
2: जी, जी।
3: तो ये बेसिकली जो फफूंद है उसके बीज हैं, स्पोर्स हैं, तो देखते ही आप पहचान जाइए कि ये चूर्णी लाशिता है। और इस देखिएगा कि जब आप मंजर वाली अवस्था होती है आम में तब ये बीमारी देखिएगा कि पूरे मंजर में भी आ जाता है और मंजर को काला कर देता है
2: जी।
3: और उसी समय माहू का प्रकोप भी होता है, तो किसान भाई आपको चाहिए कि इसमें एक बहुत सस्ती दवा, प्रचलित दवा है सल्फेक्स TWP।

0: 3 ग्राम दवा ये लीजिए, और एक है रोगर, डाइमेथोएट के नाम से आता है रोगर, तो 2 ml ये लीजिए। तो 1 लीटर में 3 ग्राम ये मिला दीजिए, 2 ml ये मिला दीजिए, तो माहू का समस्या भी समाप्त हो जाता है और चुर्निवास्ता का समस्या भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आम में जो है, एक बताया गया कि जो आम का जो ऊपरा सिरा होता है फल का, वो
1: जो
0: काला पड़
1: ब्लैक,
0: जाता
1: जी
0: है।
1: काला,
0: तो ये बीमारी मुख्यतः आपको देखिएगा कि वहाँ होता है जहाँ की ईंट का भट्टी है, तो ईंट के भट्टी से जो सल्फर डाइऑक्साइड का फ्यूम्स निकलता है, इसी के कारण जो है इसमें एक पोषक तत्व बोरॉन की कमी हो जाती है। और ये 1 से 2 किलोमीटर का एरिया जो ईंट भट्टी का है, वहाँ जो आम का पेड़ है, इसमें बीमारी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है।
1: कई बार जैसे मार्केट में भी ये देखने को मिलता है कि कुछ आम बड़ा फ्रेश दिखते हैं और कुछ आम ऐसे होते हैं जो अभी आपने
0: हाँ
1: बताया कि उस पर ब्लैक स्पॉट,
0: हाँ
1: काले काले रंग के धब्बे होते हैं,
0: धब्बे होते
1: तो
0: हैं।
1: क्या इसी बीमारी के कारण
0: नहीं,
1: वो?
0: वो बताएंगे, वो थोड़ा सा अलग बीमारी है।
1: अच्छा
0: जब अधिक बारिश हो तब जो सूटी मोल्ड का इम्पैक्ट होता है, तो
1: अच्छा
0: उसमें करना चाहिए कि डाइथेन M45 एक दवा है, जैसे ही बारिश अधिक होने लगती है तो ये फफूंद जो है वो पनपता है, तो उसमें डाइथेन M45 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे, तो उस समस्या से किसान भाई निजात पा लेंगे। लेकिन यहाँ है कि बोरेक्स, 3 से 4 किलोग्राम बोरेक्स जो है, उसका छिड़काव आपको 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं, तो और ये 2 बार करेंगे तो आपके उस आम के पेड़ में ये समस्या कम।
1: ये तो बात हुई आम की, थोड़ा
0: हाँ
1: सा अमरुद और पपीते के बारे में भी यही जानकारी, जो आम समस्या है और ख़ास करके झारखंड से जिसका वास्ता है, तो उसके बारे में बताएं कि अमरुद और पपीते के बारे
0: जो
1: में।
0: अमरूद का बगीचा किसान भाई लगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 2 समस्या आती है अमरूद में। एक तो देखिएगा, जब फलने फूलने वाला अवस्था में है, 4-5 साल फला भी पौधा, तो अचानक देखिएगा सूख जाता है और मर जाता है, तो ये इसको हम लोग सूखा रोग की समस्या कहते हैं, ये फफूंद से होता है। और इसमें है क्या कि इस जो एक बार मिट्टी में आ गई, ये बीमारी मृदा जनित रोग है, और
1: अच्छा
0: देर से चूंकि समझ में आता है तो किसान भाई को बाद में नुकसान हो करना पड़ता है। तो इसमें अगर खरीफ फसल में समस्या आ जाए तो उसमें क्या करना है किसान भाई, कि आपको एक सरी गोबर की खाद अपने पास रखनी है, उसमें एक फफूंद है जो जैविक जैविनाशी है, वो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है, ट्राइकोडर्मा पाउडर जो बाज़ार में भी उपलब्ध है,
1: अच्छा
0: तो उसको पहले आप सरी गोबर की खाद में निवेशित कर लें किसान भाई, और निवेशित करके प्रति आम का जो घेरा है उसमें,
1: अमरुद
0: हाँ अमरूद का,
1: जी,
0: उसमें रिंड बना दें, और रिंड बनाने के बाद उस घेरे में 1 से 1.5 kg उस निवेशित खाद को प्रति घेरा में डाल करके हर एक 3 महीना पे इसका उपचार करेंगे। हाँ
1: रिंड का मतलब जिसमें पानी इकट्ठा होता है, गड्ढा
0: हाँ
1: जैसा,
0: जो रिंड कहा जाता है कि सर, कि जो कैनोपी है उसके चारों तरफ थोड़ा एक नाली चारों तरफ
1: बना
0: बना
1: दिया
0: देते
1: जाए,
0: हैं,
1: हाँ,
0: 1 फीट
1: ताकि
0: का होता
1: वहां
0: है।
1: पर
0: हाँ
1: पानी टिक
0: हाँ
1: सके,
0: टिक
1: हाँ,
0: सके, और उस
1: और बिल्कुल
0: और
1: जड़ में सटा भी ना
0: हाँ और
1: हो,
0: जड़ के पास जो है, जड़ का फैलाव वहाँ तक होता है ये
1: होता
0: माना जाता है,
1: जी।
0: तो उसमें अगर 3 बार 4 बार अगर आप करते हैं तो ये समस्या आपका समाधान में हो जाता है। दूसरा एक बीमारी एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज में देखा जाता है किसान भाई कि जो आप पौधा का पत्ती है या फल है उस पर देखिएगा फफोला टाइप बनना शुरू होता है, एक फफोला दूसरा फफोला से फैलता है
1: जी जी
0: और वो पूरे को फल को ही ग्रसित कर लेता है, और कुछ दिन बाद देखिएगा पूरा फल काला हो जाएगा और झड़ के पेड़ से गिर
1: हाँ,
0: जाता
1: कई
0: है।
1: जगह पर काले काले
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: धब्बे
0: और पूरा
1: जैसे,
0: हाँ, तो उसी को हम लोग कहते हैं
1: और
0: मम्मीफाइड।
1: दूर से देखने पे लगता है
0: जी
1: कि शायद वहां पर वो सड़न हो गया है या
0: हाँ
1: कुछ।
0: जी, तो इस तरह तो इसमें क्या करना है कि जो गिर के जो निकल बागान में गिरते हैं
1: जी
0: अमरुद, उसको एकत्र कर लेना, वहाँ नहीं रहने देना है। और इसमें देखिएगा कि एक और लक्षण क्या है कि टहनी के ऊपर से ही वो पौधा सूखना शुरू होता है और नीचे आता जाता है, तो इसको हम लोग डाईबैक सिम्टम भी कहते हैं, ऊपर से सूख के नीचे की ओर आएगा। तो उसमें क्या करना है कि जो सूख रहा है जहाँ तक हरा है वहाँ उस भाग को, हरा वाला भाग के पास काट दें, उसमें बोर्डो पेस्ट का मिश्रण घोल लेप बना करके वहाँ लगा दें, और बाकी में जो है सो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से है या डाइथेन M45, वो दवा का स्प्रे कर देने से ये समस्या का निदान हो जाएगा। इसके अलावा पपीता एक फसल है जिसमें कि आप देखेंगे कि एक बीमारी आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टेम और फुट रॉट। जब देखेंगे कि बारिश लगातार हो रही है अगस्त सितंबर के महीने में और खेत में जल निकास की सुविधा नहीं है,
1: नहीं,
0: तो देखिएगा कि इसमें जो है स्टेम के पोर्शन पे जो मिट्टी से लगा हुआ जो तना है

0: उस पर देखिए चारों तरफ जो है वाटर सोक लेजन बन जाएगा और वो पूरा घेर लेगा, काला काला हो जाएगा, फिर वहीं से जो पौधा गिर जाता है। जैसे ही समस्या देखने को मिले तो खेत से तुरंत जल निकास की व्यवस्था कर दें। और एक दवाई है रिडोमिल MZ, ये एक फफूंद है पीथियम एफेनिडर्मेटम, उसके द्वारा होता है। तो जल निकास की व्यवस्था करके और पौधे के साथ जो जड़ के पास जो मिट्टी है उसको भी इस दवा से मेटालैक्सिल जो रिडोमिल MZ के नाम से बाजार में है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल बना करके पूरा ड्रेंचिंग कर दें वहाँ के मिट्टी को और पौधे में भी स्प्रे कर दें। ऐसा 2 बार करने से 15 दिन के अंतराल पे किसान भाई अपने फसल को बचा ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी फल वृक्षों में या फलों में जो रोग होते हैं उनके कैसे उसके लक्षण हैं और कैसे उन पर नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हेम चंद्रलाल, अध्यक्ष पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कृषक भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।
0: आपको ही प्रणाम, किसान भाई जोहर।
2: तो एखन हमरे मन जानकारी करत रही कि फल वृक्ष कर देख रेख हमरे मन कातेर करब और एकर से हमरे बगरा से बगरा मुनाफा कातेर ले सकीला, सेकर बारे में बड़ा नगद जानकारी भेटालक और एकर से किसान भाई मने बगरा से बगरा लाभ ले सकेना। तो भाई बहन मन बड़ा नगद जानकारी भेटालक। विशेषज्ञ रहे डॉक्टर हेमचंद लाल और इनकर से बातचीत करत रहे प्रभु शरण।
3: सही बात है बहन, और देखो तो हमरे मन गोठियाते जाती और गीत कर बारे में तो सोच भी नहीं करती। कहे नहीं नहीं कि खेती बाड़ी करब और गीत के नहीं सुनब तो कैसे होगी।
2: देखो खेती बाड़ी कर संगे संगे हमरे के रिज रंग भी करे जरूरी है, काले की खेत बाड़ी में कमाते मन थाकल रहेला, तो हमरे के थाकल मन के दूर करे खातिर रिज रंग करे बहुत जरूरी है। तो रोरे जोगाड़ करी
3: तो संगे साथी मन आई जरूर मन के बढ़िया सा गीत सुनवा थी नागपुरी में, और हमरे कर कलाकार हैं शहाबुद्दीन अंसारी और संगे मिलकर गावल गीत। Oh,

0: तो बड़ा नगद गीत रहे, खेती बारी से संबंधित गीत रहे, जे कि खेती बारी अगर हमरे करत ही तो हमरे के तीन फसिल कातर लेवे के चाहिए। हमरे के गीत कर माध्यम से बड़ा बेस नसीहत भेटालक और गीत कर माध्यम से वर्णन करल है कि तीन फसिल कातर लेवे के है।
1: सही बात है भाई बहन, देखो हमरे मन के मेसा खेती करक चाहिए। मेसा खेती करक से हमरे मन के एके बेरा में बगरा से बगरा हमरे मन के उत्पादन भेटे और नवा नवा हमरे मन के खेती कर भी प्रयोग कर सकेला है कि नहीं
0: एकदम।
1: और संगी साथी मन देखो हमारे जिसन की आई गुठिया थी जैविक खाद कर बारे में, तो आज रो मैंने एक ठो खास किसान से भेंट मुलाकात करवाओ जो कि

0: छत्तीसगढ़ का रहे वाला किसान है और जे कि जैविक कृषक के नाम से हमारे मनुख के जानीला और ऐसा खेती करे ना कि जे कि गोटा राज्य में कर नाम है और अपन खेती में बगरा से बगरा जैविक खाद कर प्रयोग करे ना और आज कर हमारे कर किसान है
1: अंतर्यामी प्रधान और इनकर से गुठिया है मनोज कुमार।
2: आज एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका अधिकतर उत्पादन विदेशों में जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका 16 सदस्यीय संयुक्त परिवार है और पीढ़ियों से जैविक खेती कर रहे हैं। आज तक कभी भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया। इनके परिवार में सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और सभी लोग मिलजुल कर जैविक खेती करते हैं। इनके और इनके परिवार को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। पारंपरिक और आधुनिक का मिश्रण करते हुए प्राकृतिक कीटनाशक और खाद तैयार करते हैं। खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन भी करते हैं, जो कि देसी रहता है। तो चले मिलते हैं एक सफल किसान से।
3: नमस्कार, मैं अंतर्यामी प्रधान, ग्राम मिलारावत, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं जैविक कृषक हूँ, जैविक खेती करता हूँ पारंपरिक तरीके से और हमारे 5 पीढ़ी से वही खेती करते आ रहे हैं। आज तक हम लोग कोई रासायनिक खाद या दवाई का प्रयोग नहीं किए हैं खेती में और रासायनिक खेती के साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। उसमें कुछ गाय पाले हैं, मुर्गा पाले हैं, बतख पाले हैं और साथ साथ हम लोग ये हॉर्टिकल्चर में आम का पौधा भी लगाए हैं और मेरे ख्याल से इसमें हमको जैविक खेती का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, लोग बाग प्रोग्रेसिव किसान बोलते रहते हैं, हम लोग कोई प्रोग्रेसिव किसान नहीं है, हम लोग परंपरागत खेती वाले पुराने किसान हैं,
0: पुराने जमाने के
3: किसान हैं। हम लोग कोई नया ऐसा नहीं किए हैं, पुराने खेती को जीवित रखे हैं और उसका मेन कारण है कि हम लोग जैसे ही 1970 के बाद रासायनिक फील्ड में लोग उतरे तो हम लोग नहीं उतर पाए। मतलब हमारे दादाजी वगैरह लोग सब विरोध किए, इसमें जाना नहीं है तो नहीं गए। तो उसके बाद हमारे पिताजी लोग भी नहीं गए, हम लोग भी नहीं गए, तो वही गौ पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन करके पूरा आजीविका चला रहे हैं। बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है और उसमें हम लोग भी साथ देते हैं, हमारे महिला वर्ग भी सब उसी में जुड़े हैं सारे जी। और मेरे ख्याल से हमको बढ़िया सा इनकम हो जाता है और खर्चा वर्चा काट कर हमको 1 एकड़ में 1,00,000 रुपये बच जाता है।
0: तो कितना जमीन होगा आपका?
3: हम लोग तो बहुत बड़ा परिवार है लेकिन 65 एकड़ में ऑर्गेनिक करते हैं। उसमें सारी चीजें हैं व्यवस्थित रूप से। अगर बंटवारा करते तो 5-5, 7-7 एकड़ आता, लेकिन हम लोग अभी भी संयुक्त परिवार हैं। हम लोग संयुक्त परिवार का मेडल भी ले चुके हैं। किसी के पास 5 एकड़ भी जमीन है और वो इंटीग्रेटेड सिस्टम से जैविक खेती करे तो उसको कहीं पर जाने के लिए, रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो। और हमारे लड़के लोग, मेरे लड़के लोग सब तो पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, सभी खेती में जुड़े हैं।
0: खेती बाड़ी करते हुए भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं?
3: व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, सब खेती बाड़ी में जुड़ गए हैं। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सब देखे कि इस ये खेती बाड़ी में सबसे बढ़िया माहौल मिल रहा है तो सब इसी में जुड़ गए हैं और सिस्टम अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सब्जी उत्पादन, ये करना दुनिया। और उसके बाद हम लोग एक सिस्टम ये बनाए हैं कि किसान को कभी भी पैसे की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप सुबह उठे तो कोई भी संसार में ऐसा धंधा नहीं है कि आपको 100 रुपया या 200 या 500 रुपया दे सुबह उठे कि बिना मानसिक तनाव में। वो केवल गाय है, आप सुबह उठेंगे कि गाय सीधा आपको कैपेसिटी के अनुसार 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर देगी और उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देंगे तो आपको 100, 200, 500 हो जाएगा। दूसरा आपका एक चीज़ है कि बिना खर्च में आप कैसे खेती कर सकते हैं, खर्च कम करना है आप, और खर्च कर कम करने के लिए आपको गोबर की ज़रूरत है और गोबर डालेंगे तो जैविक खेती संभव है। और गाय जो है गोबर भी देती है, दूध भी देती है, मूत्र भी देती है, उसका मूत्र का दवाई, गोबर का खाद, ये दवाई बन जाते हैं और गाय का जो दूध है वो तुरंत मार्केटिंग हो जाता है और ज़्यादा रेट में बिक जाता है। तो हमको जैसे ही

0: ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, गौ और गाय का गोबर और मूत्र, तो आप उसका आराम से जैविक खेती के लिए आप आगे निकल सकते। डबल धान, धान के बाद धान ना लें, एक फसल केवल धान लें, उसके बाद दूसरा जो है धान होने के बाद
1: बदल दें।
0: तो हम लोग कैसे बदलते हैं, उसके बाद हमारे मेड़ में सब अरहर लगाते हैं, उसके बाद उस अरहर की कटाई करते हैं। अरहर की कटाई करने के बाद दाल आ जाता है, दाल को भी पैकिंग करके बाहर भेज देते हैं, ठीक, उसमें अलग से पैसा आ जाता है। उसके बाद जनवरी फरवरी में क्या होता है, हम लोग गेहूँ बो देते हैं। गेहूँ बोने के बाद खाली रहता है, तो उस समय गेहूँ बोने के बाद हम लोग जो खाली टाइम रहता है उसमें गन्ना लगाते हैं, गन्ना की पेराई शुरू कर देते हैं, और हमारा गुड़ जो है एक माह तक चलता है और हाथों हाथ बिक जाता है। दो माह गुड़ बेचने के बाद आपका दाल आ गया, दाल का फिर पैसा आता है, दाल का पैसा जब शुरू हो जाता है तो फिर हम लोग फिर जो तीसरा पॉइंट है, पुराने धान को जो है कुटाई करते हैं और उसका पैकेजिंग करके बाहर भेजते हैं। फिर ये चलता है छः माह के बाद पुनः आपका क्या होता है, धान पुनः आ जाता है, पुनः आपका सिस्टम चलता रहेगा, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा एक सिस्टम चलता रहता है जो साल भर किसान के पास पैसा आता रहता है।
1: तो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जोहान।
0: नमस्कार सभी को भी, नमस्कार।
2: और जैसन के संगे साथी मन भाई बहन हमरे मन सुन ली, आज कर किसान रहे अंतर्यामी प्रधान जी की हमरे के बढ़िया से बढ़िया जानकारी दिले और यो बता लें कि खेती में काल के हमरे मन के नवा नवा प्रयोग करे चाहिए और संगे संगे जैविक खाद कर प्रयोग करे चाहिए, जेकर से कि हमरे कर खेत बाड़ी बढ़िया रहे और हमरे कर स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, है कि नहीं?
3: नगद गोइठ कहली कि देखो जैविक खेती करब तो हमरे कर माटी का स्वास्थ्य तो बढ़िया रहबे करी, संगे संग ऊपर से उपजल खेती के अगर हमरे सेवन करब तो हमरे का स्वास्थ्य भी बढ़िया रही, हमरे का जीव सवंग भी बेस रहे। तो हमरे के जैविक खेती करे चाहिए और माटी का स्वास्थ्य के भी बनाए के रखे चाहिए।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: उतला बोल रहे
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
5: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच
4: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: और संगे साथी मन, आज कर हमरे मन कर कार्यक्रम कर बेरा हो चलत है, तो कह चाहते कि कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: और प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची केर। तो किसान भाई बहन मन, खुश रहो, मस्त रहो और जीव सवांग के बेस रखो।
2: तो आज लिए बस इतने, दोस्तों ने फिल्म बिटा एवं नवा जानकारी संगे तत्व मन के रेडियो संगे मनोज और
3: जुगनी बहन के देव विदा जोहार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रामीण सभा में। किसान भाई बहन, कार्यक्रम के आरंभ में हम बातें करेंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएँ की। जी हाँ किसान बंधु, आपको जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो सुझाव दिया गया है किसान भाई बहन, हम आपको बताते चलें कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई खेत में डोबा के निर्माण के माध्यम से यथास्थान संरक्षण और जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल का प्रबंधन अवश्य कर लें, जो सूखे दिनों में फसलों की जल आपूर्ति को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जिन किसान भाई के पास ऊपरी खेत अभी भी परती रह गया है, वे कुलथी, उड़द, मूंग या अनेक प्रकार की सब्जियां की खेती के लिए वो भूमि की तैयारी कर लें। किसान भाइयों को आगामी 5 दिनों में सिंचाई, अंतर कृषि संचालन और खड़ी फसलों में पौध संरक्षण उपायों और उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर देना चाहिए। काट ली गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर आप रखिए। बारिश से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक कर रखिए। बारिश और बादल की स्थिति से खड़ी फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए किसान भाई इसकी निरंतर निगरानी आप करते रहें। जी हाँ किसान बंधु, मड़ुआ की फसल जो 20 से 25 दिन पुरानी है, उनमें निकाई गुड़ाई आप जरूर कर लीजिए। इसके पश्चात 22 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का भुरकाव भी आप कर लीजिए। किसान बंधु, घुटना अवस्था में फसल की सक्रिय वृद्धि होती है, इसलिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने की आवश्यकता है तथा जल भराव से आप बचाइए। नेत्रजन की शेष मात्रा 26 किलोग्राम प्रति एकड़ आप मक्का के लिए प्रयोग करिए टॉप ड्रेसिंग के रूप में, और खेत को खर पतवार मुक्त रखिए तथा तना छेदक और फॉल आर्मीवर्म के प्रकोप की नियमित निगरानी करिए। पत्तियों के बीच में कीट की सुंडी एवं उसके मल के अगर लक्षण आपको दिखाई दें, क्षति दिखाई दें, तो उचित नियंत्रण आप जरूर अपनाइए। किसान भाई बहन, अगर हम धान की बात करें तो रुक रुक कर शुष्क और गीले मौसम की स्थिति, नर्सरी में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग और पर्ण छिद्र अंगमारी जैसी बीमारियों के लिए अभी स्थिति वैसी बन रही है, तो रोग को फैलने से रोकने के लिए हेक्साकोनाजोल साथ में प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला करके पत्तियों पर छिड़काव करिए। यदि नर्सरी में ब्लास्ट की समस्या दिखाई दे तो टेबुकोनाजोल 50% साथ में ट्राइफ्लोक्सी अस्ट्रोबिन 25% 4 ग्राम पानी में मिलाकर 1.5 मिलीलीटर आप ले सकते हैं, पानी में मिलाकर आप इसे छिड़काव करें और 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव को दोबारा दोहरा सकते हैं। किसान बंधु, चावल की ही बात हम आगे भी कर लें। तना छेदक कीट के प्रकोप से बचाव के लिए खेत में डेड हार्ट एवं सफ़ेद बालियों को निकाल कर नष्ट कर दीजिए। प्रकोप अधिक होने पर आप क्लोरा ट्रानिलिप्रोल 18.5% 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आप मिला करके करिए, और अनावश्यक नेत्रजन यानी यूरिया के प्रयोग से आप बचिए तथा कीटनाशक का छिड़काव वर्षा रहित मौसम में ही करिए आप। किसान भाई बहन, समय पर बो गई फसल वानस्पतिक अवस्था में है, ढलान के विपरीत नालियां आप बनाइए और बनाकर अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम जरूर कर लीजिए। जो किसान भाई अभी भी बुआई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्वार, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग और भिंडी के साथ अंतर फसल अपनाने की आवश्यकता है। अंतर फसल के मामले में हम आपको बता दें किसान बंधु की अरहर के साथ ज्वार पंक्ति में लगाइए, अनुपात 1:1 रखिए आप। अरहर के साथ मक्का भी आप पंक्ति में लगा सकते हैं, अनुपात 1:1।

और अरहर के साथ मूंगफली भी आप बो सकते हैं। अनुपात 1:3 आप रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अरहर के साथ सोयाबीन पंक्ति में आप लगाइए 1:1:2, और अरहर के साथ उड़द भी लगाइए, मूंग भी लगाइए 1:1:2 आप रखिए। अरहर के साथ भिंडी की भी खेती करिए और अनुपात इसकी जो है वो है 1:1। जी हाँ किसान बंधु, परवल में फल और बेल सड़न, पत्ती झुलसन देखी जा सकती है। खेत से क्षतिग्रस्त फल और बेलों को आप हटा दीजिए, उन्हें खेत में या उसके आसपास ना रखिए। धूप वाले दिन में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके आप बारी बारी से छिड़काव करिए। किसान बंधु, करेले की फसल में फल मक्खी के प्रकोप देखे जा रहे हैं, जिससे करेले में के जो फल हैं वो पीले दिखने लगते हैं तथा फल जल्दी नरम हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई अपने खेतों में 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं तो लाभ पहुंचेगा। रतालू की अगर बात की जाए ग्रामीण बंधु, तो ऊपरी ज़मीन पर किसान भाई कंद फसलें जैसे ओल तथा मसाले जैसे हल्दी की बुआई आप कर लें। बुआई नाली एवं मेड़ विधि से करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो किसान भाई ये फसलें लगा चुके हैं वे आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए जल निकासी की उचित सुविधा भी कर लें, और जल निकासी के पश्चात खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक है। और जब नियंत्रण आप खरपतवार का कर लेते हैं तो मिट्टी जरूर चढ़ा दें किसान भाई बहन। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से पशुपालन से संबंधित जो सुझाव प्राप्त हुए हैं वो हम आपको बता दें। वर्षा एवं उमस के मौसम में पशुओं के बाड़े की साफ सफाई एवं जल निकासी की उचित व्यवस्था आप जरूर कर लीजिए। पशुओं को सूखा एवं हवादार स्थान पर रखिए तथा स्वच्छ पेयजल उन्हें उपलब्ध जरूर करवाइए। मच्छर मक्खी एवं परजीवी नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई नियमित रूप से पशुओं एवं बाड़े की निगरानी जरूर करिए। आप पशुओं को गला घोटू, लंगड़ा, बुखार एवं अन्य प्रचलित संक्रामक रोगों के विरुद्ध समय पर टीकाकरण भी आवश्यक है। बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखिए किसान भाई, और लक्षण दिखाई दे अगर बीमारी की, आप देख लें कि इस प्रकार का लक्षण है, इस तरह की बीमारी आप देख रहे हैं, तो पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करिए किसान भाई। बिल्कुल। और ग्रामीण भाई बहन, यह समय मिर्च, बैंगन एवं फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारे किसान भाई पौधशाला में कीट अवरोधी नाइलॉन की जाली का प्रयोग भी करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर आप ढक सकते हैं, और बीजों को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही पौधशाला में बुवाई करिए किसान भाई। जी हाँ, जब आप बीज उपचारित कर लेते हैं तो आप ये निश्चित हो जाते हैं, ये बातें निश्चित हो जाती है, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आप जो भी पौधा अब उगा रहे हैं उसमें रोग व्याधि लगने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल किसान बंधु। और तूफान और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण आप बिल्कुल नहीं लीजिए। खुले मैदानों या जलाशयों के पास ना रहिए। बिजली या धातु की चीज़ों को कभी नहीं छूइए किसान भाई। तार वाले बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिए। और जब इस तरह की स्थिति खेतों में काम करते समय आप देखें तो ज़मीन पर सपाट ना लेटें किसान बंधु। तो ये तो बातें हो गई खेतीबाड़ी से संबंधित, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से मौसम आधारित कृषि परामर्श जो सेवाएं जो प्राप्त हुई वो हमने आप तक पहुंचाया। जी हाँ किसान बंधु। और कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं हम एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, और बातें होंगी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की। पालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की। कुछ ऐसे पशु जिनको पालने से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उनकी बीमारियों से संबंधित बातें करेंगे। स्वागत है आपका।

0: कमल, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि ये पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड क्या है।
1: पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उन पशु पालकों के लिए है जो पशुपालक अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने पशुओं को ठीक से भोजन नहीं करा पाते हैं, या बीमा नहीं करा पाते हैं, या अपना घर सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की एक योजना आई है कि वो जो है इसको 7% इंटरेस्ट है, जिसमें से 3% इंटरेस्ट का भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 3% झारखंड सरकार वहन करेगी। अंतिम में 1% मात्र ही इंटरेस्ट जो है वो पशुपालक देंगे। इससे किसान पशुपालकों को ये फायदा होगा कि अगर वो गाय रखे हुए हैं तो उन्हें 20,000 रुपये प्रति गाय कर करके ये ऋण मुहैया कराई जाएगी। वो 3 महीने तक गाय को खाना खिलाने के बाद उससे दूध उत्पादन बढ़ेगी और उससे आमदनी कर करके इसको 10 महीने के अंदर अगर वो चुका देते हैं तो उन्हें मात्र 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 3% झारखंड सरकार देगी, 3% भारत सरकार देगी। इस तरह से हर एक जिले में गढ़वा, पलामू, लातेहार तीनों जिलों में योजना चलाई जा रही है पशुपालकों के लिए। इस तरह से पशुपालक चाहें तो जो मुर्गी रखे हुए हैं वो भी, खासकर मांस वाली मुर्गी रखे हुए हैं, तो एक लॉट निकालने में करीब करीब 500 मुर्गियों को निकालने का खर्च 60,000 रुपये होता है, तो उन्हें 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से कोई पशुपालक अगर 400 अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हैं तो उनके लिए खर्च करीब 1.5 लाख रुपये आते हैं, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये की सहायता ऋण राशि इससे मुहैया करा जा सकती है। इसी तरह से 4 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 25,000, और अगर 10 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 50,000 रुपये, और शुक्र अगर रखे हुए हैं 4 मादा शुक्र 1 नर शुक्र तो उन्हें 50,000 रुपया, 1 गाय या भैंस पर 20,000 रुपये, 5 गाय पर करीब आपको 1 लाख रुपये, और 10 गाय या भैंस है तो आपको 2 लाख रुपये तक की ऋण राशि मुहैया कराई जा सकती है।
0: और इसका भुगतान का प्रक्रिया कैसे?
1: इसकी भुगतान की प्रक्रिया है कि आप 10 महीने के अंदर अगर इस लोन को और उसका इंटरेस्ट जमा कर देते हैं तो जो आपका किसान क्रेडिट का लिमिट है, जो भी 25,000 किसी के लिए है या 50,000 रुपये है,
0: तो उन्होंने निर्धारित किया है
1: तो अगर सही उनका साख बना रहेगा तो अगली बार जो है उससे ज्यादा रकम वो निकालेंगे और उससे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: और इसमें किसान जो है या फिर जो पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनका क्या कवरेज किया जाता है?
1: किसान को अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना पड़ेगा और जिस बैंक में उनका खाता है, खास करके जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपना खाता रखें, और उसका बचत खाता का फोटो कॉपी, और जो आपका शेड है, गाय शेड हो सकता है, बकरी शेड हो सकता है, या सुकर शेड हो, मांस वाली मुर्गी के लिए मुर्गी शेड हो, उसके साथ अपना एक फोटोग्राफ्स कि आप वो व्यवसाय कर रहे हैं, गौशाला जिस पर बनाया हुआ है उस जमीन का रसीद अगर लगा कर किसान भाई वोटर कार्ड और आधार कार्ड अगर लगा देते हैं तो उन्हें वो बैंक के द्वारा एक आवेदन लगभग सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी और प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पास एक 9 पेज का आवेदन उपलब्ध है। उस आवेदन पत्र में भर करके इतने कागजात लगा करके वो अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी द्वारा ये संकलित आवेदनों को जिला के जो LDM लीड डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं उनके पास ये प्रत्येक शुक्रवार को ये आवेदन दिया जाता है, और 15 दिनों के अंदर बैंकों की जवाबदेही तय की गई है कि वो किन कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं, उसे लिखित रूप में वो LDM को सूचना देंगे और वो LDM के द्वारा वो सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, और जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को बताएंगे कि आपके इतने आवेदन पर जो है आपको आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उन्हें आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह से उनके खाते में ये पैसा चला जाएगा, इस पैसे को खर्च करने के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, वो अपने ढंग अपने हिसाब से खर्च करेंगे, और जब उससे लाभ होगा तो 10 महीने के अंदर उस पैसे को जो सूद निर्धारित है उसके साथ जमा कर देंगे, तो उससे उनकी साख बनी रहेगी और किसान भाइयों को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।
0: जी, और किसानों का क्या कवरेज दिया जाता है जैसे उनके एक्सीडेंटल केस वगैरह?
1: एक्सीडेंटल केस के लिए नहीं है, ये जो योजना हम उपलब्ध करा रहे हैं इसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को भोजन कराने के साथ, पशुओं की चिकित्सा कराने के लिए, अपने पशुओं को बीमा कराने के लिए ये पैसा दी जाती है। इससे फायदा ये होगा कि अगर बीमा कराए हुए हैं अपने पशुओं का और उनकी मृत्यु होती है तो संबंधित बीमा कंपनी उन्हें इस पैसे का भुगतान करेगी। जैसे सपोज करिए कि कोई गाय 50,000 रुपये का इंश्योरेंस है और वो गाय बीमार है, उन्होंने पशु चिकित्सक से इलाज करवाया फिर भी गाय मर गई, तो उन्हें चाहिए कि तुरंत अपने बीमा कंपनी को सूचना दें और उस डॉक्टर को सूचना दें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस कंपनी को जमा कर दें, वो कंपनी जो है इन्हें जो बीमा की रकम है उनके खाते में हस्तांतरित कर देगी।
0: अब हम आते हैं पशुओं के टीकाकरण से संबंधित बातों पर। बहुत सी कुछ खास बीमारियां भी हैं जो हमारे जो पशुधन हैं उनको प्रभावित करती हैं बीमारियाँ।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि पशुपालक भाइयों को जो बड़े पशु रखे हुए हैं गाय या भैंस उनमें

0: तीन बीमारियां प्रमुख रूप से है, एक जो हमारे किसान भाई जानते हैं गनगटिया, दूसरा टंगर फुलवा और तीसरा डकहा कहते हैं।
1: अच्छा
0: और जब भी आप टीका लगवाएंगे तो 14 दिन के बाद जो पशु इम्यूनाइज हो जाएंगे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बकरी पालक भाइयों के लिए है PPR नाम की बीमारी, जिसमें कि बकरियों में सर्दी हो जाती है, जबड़े में घाव हो जाएगा और आँख से आंसू आएगा, फिर पतला दस्त होता है, बकरियाँ मरने लगती हैं, इन्हें PPR कहते हैं। इस PPR बीमारी का जो है टीका साल में एक बार कराना चाहिए। और इसके साथ एक दूसरी बीमारी है, इसका नाम इंट्रोटॉक्सिमिया है, इसमें बकरियाँ कुछ मौका नहीं देती है, पता भी नहीं चलता है, ऑल ऑफ सडन बकरियाँ मरने लगती हैं।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: इसमें इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन लगभग सभी जिलों में झारखंड सरकार को द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसान भाई अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी और नज़दीकी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, साथ में जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर जो पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे संपर्क करके वो इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन दिलवा सकते हैं। और PPR वैक्सीन्स बाजार में उपलब्ध हैं। 100 डोज 100 बकरियों के वैक्सीन का कीमत बाजार में लगभग 450 रुपये है। पशुपालक भाई उसे खरीद कर करके अपने पशुओं को दिला सकते हैं। इसके साथ ही वैसे पशुपालक जो शुक्र पालन किए हुए हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपने शुक्रों के लिए, उनमें शुक्र ज्वर नाम का एक बीमारी होती है, उस बीमारी में शुक्र जो है तेज बुखार होगा, खाने में अरुचि होगी, गंदा दस्त होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, चलने में डगमगाहट रहती है, शरीर पर लाल पीले रंग के धब्बे निकल आते हैं, और ये शुक्र जो है 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को बचाने के लिए, शुक्र ज्वर का अंग्रेजी में स्वाइन फीवर कहते हैं, आप झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ प्रखंडों में स्वाइन फीवर टीका उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से वो टीका प्राप्त कर लगवाएं, या बाजार में जो है ये टीका उपलब्ध है, आप अपने नज़दीकी जो भी दवा दुकान है वहाँ पर आप बोलें कि स्वाइन फीवर या शुक्र ज्वर के हमको टीका चाहिए, तो 10 पशुओं का एक साथ टीका आता है, जिसका कीमत थोड़ा ज़्यादा है, 700 रुपये। तो आपके पास अगर 10 पशु हैं या नहीं हैं, तो आप आपस में मिल करके 10 पशु के लिए टीका एक साथ लें और 10 पशु में टीका लगा दें, तो आपको ये शुक्र जो बहुत जल्दी मर जाते हैं उन्हें ये बीमारी नहीं लगेगी, और वो एक साल तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी शुक्र में खुरहा चपका का वैक्सीन भी साल में 2 बार लगवाना चाहिए। अगर ये 2 टीके हमारे शुक्र पशुपालक लगाते हैं तो उनके शुक्र स्वस्थ रहेंगे और इससे उनको मुनाफा हो।
1: और कोई ऐसी बातें जो छूट रही हो?
0: इसी तरह से मुर्गी पालकों से अनुरोध है कि जो मुर्गी पालक भाई देसी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं अपने व्यवसाय को, तो उन्हें चाहिए कि जब भी देसी मुर्गी रखें तो कम से कम रानीखेत का जो 3 टीका है वो जरूर दिलवाएं। जो टुनकी से आप लोग परिचित हैं, उसमें भी अकस्मात मुर्गियां मरने लगती हैं, उसमें आप चाहिए कि रानीखेत का पहला टीका का नाम F1 स्ट्रेन है, जो कि हम लोग 4 से 10 दिनों के अंदर आँख में या नाक में एक एक बूंद देते हैं। दूसरी जो है दवा वो 21 दिन पर है, R2B वैक्सीन, उसे पानी में घोल देते हैं, सुबह तक पानी नहीं पिलाते हैं, दोपहर में पानी पर छोड़ते हैं, दवा मिली हुई पानी में, तो मुर्गियां पानी पी लेती हैं, उस तरह से दूसरा खुराक उनका हो जाता है। और तीसरी जो सुई है वो लसोटा, लसोटा जो है उनको सभी को हम 1-1 ml की सुई आती है, जो प्रत्येक मुर्गी को देना होता है। दूसरा उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन 2 महीने पर एक बार दी जानी है। अगर इतना पशुपालक भाई अपने मुर्गी पालकों के लिए इतनी वैक्सीन का इंतजाम कर लेते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें अपने व्यवसाय में सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थोड़े पैसे, क्योंकि वैक्सीन का दाम जो है बहुत कम होता है, आप देखेंगे तो मुर्गियों में ये 20 से 25 पैसे हैं, गायों में जो है वो 10 रुपये 15 रुपये आ रहा है। खुरहा चपका का वैक्सीन थोड़ा महंगा है, 30-35 रुपये। शुक्र का वैक्सीन जो है एक का बाजार से खरीदेंगे तो 70 रुपये, लेकिन सरकार के यहाँ से वैक्सीन आप प्राप्त करेंगे तो आपको निःशुल्क ही ये सारे वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार।

बहने पर जिप्सम का बुरकाव आप बिल्कुल नहीं करिए। जिप्सम डालने से पहले इनमें ढेले हैं तो उसे आप महीन कर लें। जिप्सम का बुरकाव करते समय हाथ सूखे होने चाहिए ग्रामीण बंधु, और जिप्सम का बुरकाव पूरे खेत में समान रूप से करने की आवश्यकता हमको पड़ती है। जिप्सम डालने के पश्चात उसको मिट्टी में अच्छी प्रकार से आप मिला जरूर दीजिए, और जिप्सम को बच्चों की पहुँच से दूर भी रखिए। अपने नज़दीक के ब्लॉक या फिर वहाँ कृषि कार्यालय जो है वहाँ से जिप्सम प्राप्त किया जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। और एक स्लोगन भी है किसान भाई बहन, जो हम चलने से पहले बता दें कि मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना है, फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, जिप्सम एक फायदे अनेक। जिप्सम के उपयोग से तिलहनी दलहनी एवं अनाज वाली फसलों की जो उत्पादन क्षमता है और गुणवत्ता जो है उसमें बढ़ोतरी होती है, साथ साथ भूमि का स्वास्थ्य भी बना रहता है। जिप्सम पोषक तत्व गंधक तथा का जो है सर्वोत्तम एवं सस्ता स्रोत है, और हमारे राज्य में ये आसानी से उपलब्ध भी है। तो इस प्रकार जिप्सम में कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ती है हमें, और ये अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम स्वस्थ रहें। और किसान बंधु, अब चूंकि हमारा समय आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए कार्यक्रम में बातें आज बस यहीं तक दीजिए। अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम ग्रामीण सभा से आज्ञा। नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, श्रावण आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हुआ। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो।

0: धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यही संपन्न होता है कार्यक्रम हमारी दुनिया। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
6: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचे घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
7: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
6: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में देश के 115 कलाकारों को दिया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। झारखंड के 3 कलाकारों को भी मिला सम्मान। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। संसद से सड़क तक राजनीतिक घमासान तेज। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में भारी उत्साह। खूंटी और पाकुड़ सहित कई जिलों में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। वज्रपात से बचने की अपील। और रांची में आयोजित डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर FC की धमाकेदार जीत। इंडियन एयरफोर्स को 6-0 से रौंदा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में झारखंड के 3 कलाकारों समेत देश के 115

0: विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। इनमें सरायकेला के प्रसिद्ध छऊ मुखौटा शिल्पकार गुरु सुशांत कुमार महापात्रा और रांची के बुंडू की नचनी नृत्य कलाकार बूटन देवी व सोमरी देवी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इन्हें भारतीय संस्कृति का संरक्षक बताया।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे प्रदर्शनकारियों ने मांगे न मानने पर विधानसभा घेराव से भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मुद्दे की गूंज दिल्ली के संसद भवन तक पहुंच गई है, जहां भाजपा सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड आकर छात्रों से बात करने की चुनौती दी है।
2: सिर्फ ट्वीट करने से बाइट देने से नहीं चलेगा। दिल्ली से राहुल गांधी में दम है तो मुख्यमंत्री का आवास के सामने धरना में जाकर बैठे आंदोलन करे और सरकार को चेतावनी दे। छात्रों का जो सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई जांच कराए और वहां पर सरकार यदि नहीं कराती है तो समर्थन वापस लेकर के छात्रों के साथ आंदोलन में बैठे।
0: वहीं 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को देखते हुए रांची प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और चारों ओर कड़ी बैरिकेडिंग कर दी है। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्तारूढ़ झामुमो ने भी तीखा पलटवार किया है। झामुमो सांसद विजय कुमार हांसदा ने दिल्ली में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं, जायज मांगे मान ली गई हैं और लंबित मुद्दों की जांच जारी है।
3: आंदोलन को बीजेपी या कहिए कि ऐसे कई लोग उसमें घुस चुके थे, वीडियोस भी आ रहे हैं। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि उस आंदोलन को धूमिल करना चाह रहे थे। हमारा लक्ष्य यही है कि व्यवस्था सुधरे, शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी हो रही है एग्जाम्स में वो सारी खत्म होनी चाहिए। जो लोग इसमें संलिप्त है उनको हमारी सरकार बहुत स्पष्ट है, हमारे सीएम साहब ने खुद कहा कि अगर उसकी आज उनके ऑफिस तक आती है तो वहां तक भी जांच होनी चाहिए।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और विवादों के बीच उन्होंने अपर आयुक्त योगेश कुमार की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले पर अब आगामी 25 अगस्त को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि श्री ख्यांगते को जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता के मामले में सीआईडी ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो की 14 वर्षीय लापता बच्ची के मामले में राज्य सरकार से सीबीआई जांच पर आपत्ति या सहमति को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। अक्टूबर 2020 से लापता बच्ची के सोशल मीडिया अकाउंट के सक्रिय होने और क्रॉस बॉर्डर मामले की आशंका के कारण कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में कम बारिश और भीषण गर्मी से खेती प्रभावित है। स्थिति को देखते हुए समाहरणालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। जिले में 87 मेगावाट बिजली की कमी है। यहां रोजाना 20 से 25 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। मंत्री ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली देने के निर्देश दिए। कृषि कार्य को प्राथमिकता पर रखने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य भर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। खूंटी में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अगुवाई में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने देशभक्ति धुनों के बीच विशाल रैली निकाली। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।
4: यह तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में भक्त भारतवासी इस आयोजन के माध्यम से

0: भारत में सशक्त भारत बनाने का संदेश आम
1: जी
0: जनता और आम नागरिकों में जागृति पैदा हो, इस दृष्टि से यह अभियान चल रहा है और इसका उद्देश्य है सशक्त भारत, समृद्ध भारत।
2: वहीं पाकुड़ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की।
3: अपने अपने उत्पाद का प्रदर्शनी
2: हजारीबाग के
3: करेंगे
2: बड़ा
3: वहाँ। उस
2: अखाड़ा
3: उत्पाद में
2: परिसर में
3: छोटे
2: सोलह
3: छोटे
2: से
3: एस
2: चौदह
3: एच जी
2: दिनों
3: ग्रुप,
2: तक
3: स्वयं सहायता
2: जनता की
3: समूह
2: ओर
3: होंगे,
2: से सबका
3: बड़ी
2: आयोजन
3: पापड़
2: किया
3: अचार
2: गया।
3: बनाने वाली महिलाएं,
2: केंद्रीय
3: आर्ट
2: एमएसएमई
3: पेंटिंग बनाने
2: मंत्रालय
3: वाले,
2: के
3: ट्राइबल
2: सचिव
3: क्षेत्र
2: के
3: से, ये
2: अनुसार
3: लोग महिलाओं को हम
2: उत्सव
3: लोग
2: में चार
3: प्लेटफॉर्म दे रहे
2: राज्यों
3: हैं।
2: के
3: और ये जो
2: महिला
3: प्लेटफॉर्म का
2: सदस्यों
3: हमें
2: ने
3: सहयोग
2: भी
3: मिला हुआ है वो
2: सहयोग
3: हमें
2: प्रदान किया।
3: एमएसएमई मंत्रालय
2: राष्ट्रीय
3: के
2: अभियान प्रमुख
3: पीएमएस स्कीम
2: राजमोहिनी
3: के
2: ने बताया
3: तहत
2: कि इस
3: इसमें हमें
2: दौरान
3: सहयोग
2: श्री
3: मिला
2: राम
3: है।
2: कथा, 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होंगी।
3: 17 अगस्त से 24 अगस्त, जिसमें दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और झारखंड महिला उद्यमी अपने अपने उत्पाद का प्रदर्शनी करेंगे वहाँ। उस उत्पाद में छोटे छोटे एस एच जी ग्रुप, स्वयं सहायता समूह होंगे, बड़ी पापड़ अचार बनाने वाली महिलाएं, आर्ट पेंटिंग बनाने वाले, ट्राइबल क्षेत्र से, ये लोग महिलाओं को हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म का हमें सहयोग मिला हुआ है वो हमें एमएसएमई मंत्रालय के पीएमएस स्कीम के तहत इसमें हमें सहयोग मिला है।
2: राज्य में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका समेत राज्य के सभी जिलों में आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। आगामी 15 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। दुमका में आईपीएस अधिकारी वेदांत शंकर के नेतृत्व में 14 प्लाटूनों ने शानदार मार्च पास्ट किया। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आज सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी है। वहीं सरायकेला, गुमला, खूंटी, रांची और हजारीबाग सहित मध्य व उत्तर पश्चिमी भागों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 14 से 17 अगस्त के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गर्जन के साथ वज्रपात का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज खेले गए डूरंड कप ग्रुप सी के एकतरफा मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने शानदार खेल दिखाते हुए इंडियन एयरफोर्स एफटी को 6-0 से हरा दिया। इस बड़ी जीत के साथ जमशेदपुर एफसी ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा साबित कर दिया है। शुरुआत से ही जमशेदपुर एफसी के फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने एयरफोर्स के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और एक के बाद एक 6 गोल दागे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में देश के 115 कलाकारों को दिया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। झारखंड के 3 कलाकारों को भी मिला सम्मान। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। संसद से सड़क तक राजनीतिक घमासान तेज। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में भारी उत्साह। खूंटी और पाकुड़ सहित कई जिलों में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। वज्रपात से बचने की अपील। और रांची में आयोजित डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर एफसी की धमाकेदार जीत। इंडियन एयरफोर्स को 6-0 से रौंदा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आजकल
4: है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: गुमला जिला अब से कुछ वर्ष पूर्व तक नक्सल गतिविधियों के कारण पूरे देश में चर्चित रहा करता था, मगर अब गुमला जिला नक्सल मुक्त हो चुका है।

0: ऐसे में जिला के वैसे क्षेत्र जहां आजादी के बाद से विकास की किरणें नहीं पहुंची थी, उन इलाकों में बिजली, सड़क, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है। ग्रामीण बताते हैं कि
1: पहले नक्सलवाद थे, उस समय बहुत मुसीबत से जिए हैं हम लोग। घर बाहर निकलना मुश्किल था, रात बिरात या दिन में भी डर था, भय था। चाहे कोई आगे बढ़ने लायक था, उन लोग को भी खोज खोज के उन लोग चिन्हित में रखता था। वही लोग के चलते रोड भी नहीं बन रहा था, रोड भी अब बना। पेशेंट सबको पहले सहिया करते थे हम, उस समय खटिया में ढो ढो के लाए हैं, घाट उतारे हैं और डिलीवरी पेशेंट को सदर अस्पताल लिए हैं। इस सब मुसीबत था, अभी तो वो सब नहीं है।
0: नक्सल गतिविधियों की समाप्ति को लेकर गुमला के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि
2: देखिए, हम लोग गुमला जिले की तस्वीर को अगर अच्छे से देखें तो पहले के समय में स्थिति ऐसी थी कि आप जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर आगे जा पाना भी संभव नहीं हो पाता था। उसकी अनेकों वजह थी। सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह थी कि कई बार रास्ते में एम्बुश हो जाता था, आईडी के जरिए अटैक्स हो जाते थे और विकास कार्य पूरी तरीके से प्रभावित होता था। लेकिन धीरे धीरे पिछले कई सालों में लगातार पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने बहुत सुंदर काम किया। तत्पश्चात आज के समय गुमला जिला पूर्णतः नक्सल मुक्त है। इसके कारण से आप देखेंगे कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी छोटी छोटी पुलियों का निर्माण, सड़क का निर्माण और विकास की योजनाओं को धरती पर बहुत ही आसानी से उतारा जा सकता है। अब आप देखेंगे गुमला जिले में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके बहुत सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हैं, कुछ पर्यटक स्थल भी डेवलप किया गया है।
0: वहीं नक्सल समस्या से बाहर निकलने के बाद अब गुमला जिला भी अपनी पहचान बदल रही है। इस संबंध में जिला उपायुक्त ने कहा कि
3: गुमला जिला घोर नक्सल प्रभावित जिला में से था और इस जिला में नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। प्रशासन के लोग, कोई भी अधिकारी गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। आज ये जिला लगभग 100% नक्सल फ्री हो चुका है। आज निर्भय होकर सभी अधिकारी गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। सभी जगह रोड्स हो गए, सभी गांवों तक लगभग पहुंच चुकी है और पीएम जनमन के तहत भी पीबीटी जी विलेजों में जो पहुंच पात नहीं था उनके उन तक पहुंचने के लिए सभी जगह लगभग बन चुकी है। इसके अलावा हर घर नल योजना के तहत सभी ग्राम चालित हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य सभी गांवों तक हो चुकी है।
0: बहरहाल केंद्र सरकार की नक्सल उन्मूलन अभियान चलाए जाने से करीब 1.5 दशक तक माओवाद का दंश झेल चुके गुमला के आम जनमानस अब भयमुक्त माहौल में रह रहे हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
4: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

जो तुम अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण FM 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक रंग। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्मों से लिए गए देशभक्ति गीत। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। तो आइए सुनते हैं फिल्मों से लिए गए देशभक्ति गाने।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते थे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते, तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन

शॉट हम आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मेकरन, और इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं देशभक्ति गीत।

0: श्रोताओं, एक रंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्मों से लिए गए देशभक्ति गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उजाले की ओर में सुप्रिया पांडे की वार्ता। विषय है सीखो और कमाओ योजना।
1: और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल सीखो और कमाओ योजना भारत सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में अल्पसंख्यक

संख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि नई पीढ़ी परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। यह योजना 23 सितंबर 2013 को अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। रोजगार एक प्रशिक्षण महानिदेशालय की रिपोर्टों के अनुसार भारत के अधिकांश श्रम बल में विपणन योग्य कौशल नहीं है, जो समुचित रोजगार प्राप्त करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बाधा है। हालांकि भारत में युवाओं की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन 10% भारतीय श्रमिक बलों, 8% अनौपचारिक तौर पर तथा 2% औपचारिक तौर पर ही व्यावसायिक कौशल प्राप्त किया है। लगभग 63% स्कूली छात्र कक्षा 10 तक आते आते विभिन्न चरणों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। देश में लगभग 3.1 मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण सीटें ही उपलब्ध हैं, जबकि 12.8 मिलियन व्यक्ति हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यहां तक कि इन प्रशिक्षण स्थलों के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले कुछ ही बच्चे उपलब्ध हो पाते हैं। इससे पता चलता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले की एक बड़ी संख्या एक और अपनी रोजगार परकता में सुधार लाने के लिए कौशल तक पहुंच नहीं रखती है। वहीं 12.8 मिलियन नौकरियां उपलब्ध होती हैं। 2011 के आकलनों के अनुसार भारत में 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 244 मिलियन का कौशल अंतर है। सचेतर समिति की सिफारिशों के अनुसार देश उच्च विकास की अवस्था से गुजर रहा है। यह समय अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय का विशाल तबका स्वरोजगार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। इसके अलावा एक उल्लेखनीय अनुपात विशेषकर महिलाएं वास्तव में गृह आधारित कार्य में लगी हुई हैं, जबकि इनमें से कुछ कार्मिक उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं जिनमें विकास हुआ है। वही बहुत लोग उन व्यवसायों में लगे हुए हैं जिनका विकास स्थिर है। विकासोन्मुख क्षेत्रों में कामगारों की मदद करने के लिए एक नीति की जरूरत है, ताकि वे उस क्षेत्र में कार्य कर रही बाजारोन्मुख फर्मों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सके। इसके लिए भारत को अपने क्रमिकों को ज्ञानी कार्मिक बनाने की जरूरत है, जो बहु कौशल प्राप्त हों। इसके लिए अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के संबंध में कर्म समूह की सिफारिशों के मद्देनज़र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का वित्त वर्ष 2013-14 से अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु एक नई 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना सीखो और कमाओ क्रियान्वित किया गया योजना है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बेरोजगारी दर को कम करना, अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण करना एवं उनका उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना, मौजूदा कार्मिकों को रोजगार परकता के लिए बेहतर तथा उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना, हाशिया पर रह रहे अल्पसंख्यक के लिए आजीविका का बेहतर साधन पैदा करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना, देश के लिए सशक्त मानव संसाधन तैयार करना। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक परंपरागत व्यवसायों के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक सम्मान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना होगा, जिससे उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशलों हेतु विकास कार्यक्रम की शुरुआत करता है। NCBT द्वारा अनुमोदित इस पाठ्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे बहुत से पारंपरिक कौशलों जैसे कढ़ाई, चिकनकारी, गरदोजी, पैचवर्क, रत्न एवं आभूषण, काष्ट कार्य, चमड़ी की वस्तुएं, कांस्य धातु कार्य, कांच के बर्तन, कालीन आदि शामिल हैं। इनके अलावा विशिष्ट कर राज्य अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन PIA के माध्यम से किया जाता है। कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो कम से कम 3 वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबंध हो तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार का कोई भी संस्थान, पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्थान भी इसे क्रियान्वित कर सकती है। वैसा NGO जो विशेषकर

अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण में संचालन एवं संवर्धन में लगी हो। पात्रता: प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की आयु 14 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इनकी न्यूनतम शिक्षा कम से कम 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।

0: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी के लाभ के लिए क्रियान्वित की गई है। इस कार्यक्रम में 33% सीटें बालिकाओं, महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। इस योजना के दो संघटक हैं, पहला आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण और दूसरा पारंपरिक व्यापार, शिल्पों, कला व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण। आधुनिक ट्रेडों के लिए 3 माह का प्रशिक्षण होगा। इस कार्यक्रम में सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईटी प्रशिक्षण तथा बेसिक अंग्रेजी प्रशिक्षण शामिल हैं। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु यह है कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत किस्म का रोजगार मिले। प्रशिक्षुकों को आधार, यूआईडी संस्था अथवा अल्प किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान से जोड़ना होगा। इस प्रशिक्षण में बाहरी प्रशिक्षणार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदाय के निरक्तों के लिए 2.5% आरक्षण की सुविधा है। वित्त पोषण का स्वरूप, यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा पैनल में शामिल किए गए पात्र संगठनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। परियोजना लागत का 5% प्रोत्साहन राशि उन PIE को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक ससमय पूरा करते हों तथा प्लेसमेंट सहित सारी शर्तों को पूरा करते हैं। प्लेसमेंट से जुड़े संबंधित कौशल प्रशिक्षणार्थी जो बाह्य स्थान से आते हैं उन्हें 3 महीनों के लिए योजना आवास पर 1500 प्रति लाभुक तथा 750 वजीफा देने का प्रावधान है। गैर आवासियों के लिए स्थानीय 1500 वजीफा का प्रावधान है। पारंपरिक ट्रेडों के लिए गैर आवासीय 10,000 रुपये प्रतिमाह एवं आवासियों के लिए 13,000 रुपये प्रतिमाह लागत दी जाती है। परियोजना अनुमोदन पर विधियां 3 किस्तों में विमुक्त की जाती हैं, जिसका अनुपात 40:40:20 प्लस प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठन संस्थान को परियोजना में शामिल करने हेतु सरकारी वेबसाइट के माध्यम से पैनल हेतु विज्ञापन जारी करती है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दाता समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस समिति में मंत्रालय से संबंधित समुचित योजना आयोग का प्रतिनिधि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार का प्रतिनिधि, मंत्रालय के निदेशन एवं योजना से संबंधित निदेशक होते हैं। प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के पश्चात सहायता, चूंकि इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सार्थक रोजगार प्रदान करना है इसलिए PIE को 75% अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट तथा कम से कम 50% का संगठित क्षेत्र में किया जाना चाहिए। PIA द्वारा रोजगार के प्रारंभिक महीनों में उन्हें स्थापित करने एवं उनका देखरेख करने में सहायता करनी पड़ती है। सीखो और कमाओ योजना संबंधी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। लाभार्थी द्वारा अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। वह संस्थान जो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहती है उनको पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। प्रतिवर्ष संस्थान को लिखित जानकारी देनी होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। संस्थान को राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रुपये का नम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह जानकारी प्रदान करनी होगी कि इस योजना का दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है एवं अनुदान की राशि योजना के कार्यान्वयन में खर्च की जा रही है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुदान की राशि सरकार को वापस करनी होगी। मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया गया किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भुगतान करने का जिम्मेवार नहीं होगा। अनुदान को किए जाने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी खिंडों का निपटारा दिल्ली न्यायालय का होगा। संगठन द्वारा किसी भी धार्मिक, सांप्रदायिक, रूढ़िवादी या विभाजन सिद्धांतों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। संगठन द्वारा लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो देश के सुसंगठित क्षेत्र के युवाओं का भविष्य निर्माण में महती भूमिका निभा सकता है।
1: आप सुन रहे थे रश्मि पांडे की वार्ता, विषय था सीखो और कमाओ योजना।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। रात्रि के 8 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा।

चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का

उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडीके सदस्य एलके सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए।
इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का

आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य

0: माहौल देखने को मिला था जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इस संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय सिन्हा का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं तलत महमूद की आवाज़ से। फिल्म का नाम है बिरादरी।

बिरादरी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल पंकज उदास की आवाज में बाहर आने तक का ये गाना। गीतकार हैं इब्राहिम अश्कर, संगीतकार राजेश रोशन।

बाहर आने तक। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पुडवाल और पंकज उदास की आवाज़ों में। गीतकार थे इब्राहिम अश्क और संगीतकार राजेश रोशन। अब आइए सुनते हैं कैफी आजमी के लिखा हुआ गीत है। संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद, गायिका है सुरैया, फिल्म है शमा।

शम्मा फिल्म के गीत अभी आप सुन रहे थे सुरैया की आवाज़ में, गीतकार थे कफी आजमी और संगीतकार गुलाम मोहम्मद। अब भाई सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, गायक कलाकार किशोर कुमार, फिल्म है अमर।

किशोर कुमार की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे अमर प्रेम फिल्म का गीत, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। अब आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीतकार हैं अनु मलिक, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की, फिल्म है आवारगी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आवारगी फिल्म का गीत। बोल थे आनंद बख्शी के और संगीतकार थे अनु मलिक। लीजिए सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत। फिल्म है दुनिया दिलवालों की। गीत के बोल हैं नितिन रैकवार के और संगीतकार ए आर रहमान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से FM 103 MHz पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार संध्या, न्यूज़ 8:09 और उर्दू में खबरें। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन

0: विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% चेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केनिया और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900

0: करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया।

0: भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ

0: हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्वामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, ओडिशा, गंगाई, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ 35 तमगे हासिल कर चुकी है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास पिछले महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। 25 दिन पर मुश्तमिल 19 नशिस्तों के बाद मॉनसून इजलास आज खत्म हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: मॉनसून इजलास के दौरान ऐवान में कानून साजी और कौमी मामलात पर बहस की गई। कई अहम बिल मंजूर किए गए, जिनमें पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी ताजीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्रिब्यूनल में इसलाहात से मुतालिक बिल, टैक्स और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल, इमदाद बाहमी की तरक्की की कौमी कारपोरेशन से मुतालिक तरमीमी बिल और केरला नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 शामिल हैं। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के पास भेज दिया है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाना है। अलबत्ते इजलास के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा के एहतजाज के सिलसिले में एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के सिलसिले में और अयोध्या राम मंदिर में दिए गए दान की रकम में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में बार बार रखनांदाजी भी देखी गई। हुकूमत की जानिब से कई बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो तलबा के मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा और ऐवान

0: की कार्रवाई में रखना डालते रहे। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: इस दौरान पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट में बहस से फरार इख्तियार करने का इल्जाम लगाया, जबकि हुकूमत उसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट का रवैया जमहूरियत, बिलखसूस पार्लियामानी जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट बहस, तबादला ख्याल और कानून साजी से मुतालिक कार्रवाई के लिए है, लेकिन लगातार नारेबाजी और एहतजाज से मानसून इजलास में ऐवान की कार्रवाई मुतासिर रही। जनाब रिजिजू ने कहा कि मानसून इजलास के दौरान 12 बिलों को मंजूरी दी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर दोनों ऐवानों में बहस हो पाई। उन्होंने ये भी बताया कि इस इजलास के दौरान लोकसभा की कारकर्दगी 19% और राज्यसभा की कारकर्दगी 39% रही।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: जनाब रिजिजू ने इस बात पर तश्वीश का इजहार किया कि पहली मरतबा पार्लियामेंट में आए कई अराकीन पार्लियामेंट बार बार की रखनांदाजी के सबब पार्लियामेंट का तजुर्बा हासिल नहीं कर पाए। कोयले और कानकनी के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट की जानिब से आज मंजूर किए गए कानकनी और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल से किसी रियासत के हकूक सलब नहीं होंगे और किसी रियासत के महसूलाती ढांचे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि इस बिल का मकसद बड़े मादनियात की पैदावार में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि मरकज हुकूमत के मजमुई अंदाज नजर के जरिए कानकनी के शोबे में सरमायाकारी और रोजगार को बढ़ाने के सिलसिले में काम कर रहा है।
3: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से एक दिन कबल कल मुल्क से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे नशर होगा। अंग्रेजी में खिताब के बाद दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर इसे हिंदी में भी नशर किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में दूरदर्शन पर खिताब के नशरी के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इलाकाई जबानों में इसको नशर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने मुतालिका इलाकाई नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे खिताब को इलाकाई जबानों में नशर करेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि तिरंगा हर शहरी के फख्र की अलामत है और ये मुल्क के जबरदस्त इत्तेहाद की अक्कासी करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने शहरियों से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा लहराने और इस मुहिम में शामिल दूसरों के साथ जुड़ने की अपील की। जनाब शाह ने सभी से तिरंगा के साथ अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने की भी अपील की। मुल्क की मजमुई बरामदात बशमूल साजो सामान और खिदमात इस साल जुलाई के महीने में 80.14 अरब अमरीकी डॉलर रही, जो 13.3% का साल बसाल इजाफा है। कॉमर्स की वजारत की जानिब से जारी किए गए आरजी आदाद शुमार के मुताबिक बरामदात के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी की क्यादत साजो सामान की खेप की वजह से रही, जो पिछले साल के मुकाबले 19.6% बढ़कर 44.24 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। मुल्क के साजो सामान की तिजारत के खसारे में पिछले महीने 31.5% का साल बसाल इजाफा होकर ये 15 अरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचा। मौजूदा माली साल में अप्रैल से जुलाई के अरसे के दौरान साजो सामान की बरामदात मजमूई तौर पर 73.78 अरब अमरीकी डॉलर रहने का तखमीना है, जो कि सालाना बुनियाद पर 17% का इजाफा है। वहीं खिदमात की बरामदात का तखमीना पिछले महीने 35.89 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो कि पिछले साल 33.74 अरब अमरीकी डॉलर था। इस साल जुलाई के महीने में मजमुई दरामदात में 15.83% का इजाफा हुआ और ये पिछले साल की इसी महीने के 82.16 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 95.16 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने यौम आज़ादी से कबल कौमी राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आज

महकमे ने अगले 3 से 4 दिनों तक मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाके, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने इस माह की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। नाइजीरिया के लागोस में मुनक्कदा 4 रोजा दौलत मुश्तरक तलवारबाजी चैंपियनशिप मुकाबलों में भारत 35 तमकों के साथ चैंपियन के तौर पर उभरा है। भारतीय दस्ते ने इन मुकाबलों में अंडर 23 और सीनियर जुमरों में सोने के 13, चांदी के 8 और कांसे के 14 तमगे जीते हैं। सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने मुकाबले के चौथे और आखिरी दिन 6 मुकाबलों में सोने के 5 तमगे अपने नाम किए। इस बेहतरीन कारकर्दगी ने भारत को विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी दिलाने में भी मदद की, जो दौलत मुश्तरक तलवारबाजी फेडरेशन की जानिब से मजमुई तौर पर बेहतरीन नतायज हासिल करने वाले मुल्क को दी जाती है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अकवामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, ओडिशा, गंगाई मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरक तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ कुल 35 तमगे हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेट में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक तासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
2: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगी, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
2: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
2: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
2: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
2: नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
2: अब फिर कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पा

0: आप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
1: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमति अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही गई।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन
1: लावा है, चलत ना ही सारी से की निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाह रे महारानी बाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का ना ही इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है फटे रे, एक छाती का एक समझाए दियो,
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा।
1: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हट रे, हट।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

0: फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।
1: जय

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। श्रोताओं सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। फिल्मी गीतों के इस सफ़र में मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आज के इस सफ़र में हमारे जो कलाकार हैं वो प्रसिद्ध संगीतकार रोशन साहब हैं। तो इस प्रोग्राम में हम आपको सुना रहे हैं रोशन साहब के स्वरबद्ध किए फिल्मी गाने। पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं मुकेश की आवाज़ में, गीत के बोल हैं केदार शर्मा। और फिल्म का नाम है बावरे नैन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीकंदा, और इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। अभी आप सुन रहे थे गीता रॉय और मुकेश की आवाज़ में केदार शर्मा का लिखा हुआ गीत। संगीतकार तो रोशन साहब हैं और बोल थे केदार शर्मा के, फिल्म थी बावरे नैन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मुकेश और लता जी की आवाज़ फिल्म में मल्हार। गीतकार है इंदिवर।

मल्हार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गीतकार थे इंदिवर। और अब भाई सुनते हैं फारूक अशर का लिखा हुआ गीत, आवाज़ है तरत महमूद की, फिल्म है अनहोनी।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम समर्पित किया है हमने मशहूर संगीतकार रोशन साहब पर। नज़र डालते हैं इनके जीवनी पर। प्रसिद्ध जो रोशन साहब है, इनका पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। हिंदी सिनेमा के एक महान संगीतकार और एसराज वादक थे, जिनका जन्म 14 जुलाई 1917 को हुआ था। उन्होंने अपने बेहतरीन गजलों, भजनों और कवाली संगीत से हिंदी फिल्मों को एक अलग और नई पहचान दी। इनका पूरा नाम तो आपको बता दें, रोशन लाल नागरथ। इनकी जो शिक्षा है, लखनऊ के मर्स कॉलेज से पंडित एस एन रातरंजनकर से संगीत की शिक्षा इन्होंने हासिल की थी, और इस राजवादन उस्ताद अलाउद्दीन खान से सरोद और शास्त्रीय संगीत भी सीखा था इन्होंने। दिल्ली आकाशवाणी में इस राजवादक के रूप में इन्होंने कार्य किया, और जो प्रमुख फिल्में हैं जिसमें इन्होंने अपने संगीत को दिया है वो थे बरसात की रात, ताजमहल, चित्रलेखा, ममता। बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने गीत को स्वरबद्ध किया है। तो इसी क्रम में अब लीजिए, सुनिए लता जी की आवाज़ है, फिल्म का नाम अजी बस शुक्रिया। फिल्म है ये, फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया, और आवाज़ लता जी की है, बोल है फारूक कैसर की।

बरसात की एक रात, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे साहिल लुधियानवी। सूरत और सीरत ये नाम है फिल्म का, और इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए मुकेश साहब की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र।

रजनीगंधा कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं संगीतकार रोशन साहब के स्वरबद्ध किए गाने। रोशन साहब की बात चली है तो रोशन साहब के दो लड़के हैं, राजेश रोशन और राकेश रोशन। तो राजेश साहब जो हैं वो संगीतकार हैं और राकेश रोशन अभिनेता, और उनके पुत्र राकेश रोशन के पुत्र हैं ऋतिक रोशन, जो बॉलीवुड में सुपरस्टार की हैसियत से अभी भी काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपको सुना रहे हैं अब आरती फिल्म का गीत। गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं।

रोशन साहब ने उस दौर के जितने भी प्रसिद्ध गायक कलाकार थे उनके साथ गीत बनाए और सारे गीत जो है सुपरहिट भी रहे। तो अब लीजिए सुनिए, मन्ना डे की आवाज़ है, फिल्म है दिल ही तो है, गीत के बोल सहर लुधियानवी साहब के हैं।

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir ta
1: दिल ही तो है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में, गीतकार थे साहिल लुधियानवी। आप सुनते हैं इस प्रोग्राम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताजमहल, गीत के बोल साहिल लुधियानवी साहब के हैं।

ताजमहल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार थे सहिर लुधियानवी। फिर से सुनते हैं सहिर साहब का लिखा हुआ गीत, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, फिल्म है चित्रलेखा। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। और आज का ये जो रजनीगंधा कार्यक्रम है, समर्पित है मशहूर संगीतकार रोशन साहब को।

चित्रलेखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़। फिल्म है दूज का चांद, गीतकार सहर लुधियानवी।

लता जी की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे बाहू बेगम फिल्म में, गीतकार थे शायर लुधियानवी। अब आइए सुनते हैं मजरू साहब का लिखा हुआ गीत, गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी, फिल्म का नाम है भीगी रात।

नमस्कार, मैं हुसैन जसीना और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। ये सुनिए मुकेश की आवाज़ है, फिल्म का नाम अनोखी रात, गीत के बोल इंदिवर साहब के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। ये प्रोग्राम केंद्रित था मशहूर संगीतकार रोशन साहब का, और ये सफ़र पूरा किया आपने अपने दोस्त संजय सिन्हा के साथ। आज्ञा दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनेगा क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में

11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।